0: Now, the Israeli PM Benjamin Netanyahu spoke with Indian captain Smit Machar, calling him a hero of the entire world, following an alleged attempt by his co-pilot to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. Netanyahu spoke to Captain Machar, who is undergoing treatment at a hospital in the UAE, and also invited him alongside Prime Minister Narendra Modi to light a flame on Israeli Independence Day. During the emotional conversation with the Israeli PM, Captain Machar revealed new details about the terrifying moments in the cockpit and described in details how his own Omani co-pilot attacked him and tried to crash the plane. Earlier, the UAE Deputy Prime Minister met Captain Smith and lauded his actions. He said the Indian pilot embodied the highest degrees of courage, responsibility and care for human life, adding that the UAE is proud to have Captain Smith as part of its team. Meanwhile, the Indian embassy in the UAE has said the Indian braveheart is recovering well and remains under excellent medical care.
1: It was a normal flight, and the co-pilot offered, I mean, he wanted to pray, which a lot of locals, they do pray, and which is not out of the ordinary. But while he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after I think I would say about 4 or 5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. But then after that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me. I did try to stop him, but because of his initial blows, my vision was almost like nothing. And I was completely blurred out. And at that point, the next feeling that I had was that the aircraft was sharply going down. So my memory is still in bits and pieces right now, but this is what I remember out of that time. And I did try and manage to open the door once, but I think he shut it back close. And at this point, I remember I was lying down on the cockpit floor, and I felt the aircraft and the whooshing sound and people screaming. And as I was telling the ambassador here, that I had that one last fight left in me, that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything, I gave everything that I had, and just went for the door and opened the door. And thankfully, people were waiting to pounce back, took over the control, and the rest is what you know, sir.
2: Well, I'm amazed at your courage, at your coolness of judgment under impossible conditions. And I don't know, how did you get to pull? You pulled the pin that opens the pilot's door? The cockpit door?
1: No. Sir, the door from the inside has a twist to open mechanism. And from the outside, it can be only opened with a code. So my colleagues from outside were trying to pitch in the code, but the guy was not allowing to open the code. And the only way to open the door was to reach the knob, and like any other knob, just to twist it open. And it opens on its own. So there is no pin, but yes, the door, it was a short, quick twist, but the point was to reach to that place. And once I had my hand on the knob, I guess I twisted it and I opened it.
3: TV पर जैसा आपने देखा, और बाद में जब खबरें सामने आई कि उनका शौर्य, शौक के साथ शौर्य भी आपने उसका देखा, क्या लगा आपको, भांजे पर कितना गर्व रहा?
4: बहुत ही एकदम गर्व।
3: आपकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं। आप जब बोल रहे थे तो आप बड़े भावुक हो रहे थे, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपके भांजे है वो, और भांजे ने इतना कमाल किया है कि पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड जो है आज उनके गुणगान गा रहा है।
5: सर, बहने और भांजे, भांजा अपने हिंदू में सबसे सर्वोपरि है। आज भी बोले जाता है कि एक भांजे को खाना खिला दो आप तो पूरे ब्राह्मण को खाना खिलाने बराबर है। और भांजे को ये कंडीशन हो जावे तो बट निचले हम भावुक हो जाएंगे। और भांजे का जो शौर्य है उसके सामने आज कुछ भी कहूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे।
6: मुझे तो बहुत गर्व है उसके लिए कि उसने इतना बड़ा पराक्रम किया, और उसकी हिम्मत और उस शौर्य की दाद सारा दुनिया दे रही है, और हम भी वही कर रहे हैं। बस इतनी प्रार्थना है भगवान से कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, उसकी स्पीडी रिकवरी हो जाए और घर पे आ जाए। हमें बहुत संतुष्ट है कि वो इतनी बड़ी दुर्घटना से बाहर आया अपनी हिम्मत से, और ये हिम्मत उसको भगवान ने ही दी, और वो हमेशा खुश रहे। वो अच्छा, सबसे बड़ा हनुमान जी का भक्त है वो।
7: उस देव का आशीर्वाद ही है, क्योंकि उसने इंटरव्यू आया था कि बोले मैं जब ये लड़ाई लड़ रहा था तब मेरे मन में ही हनुमान चालीसा मैं पढ़ रहा था। यानी इतना अटूट विश्वास उसका हनुमान जी पे है, यानी उनके माँ बाप के, उसके संस्कार, ये सब धैर्य। यानी उसने वो जो इंसिडेंट हुआ वो माइक्रो सेकंड्स में उसने जो डिसीजंस लिए वो सही साबित हुआ, और उन्होंने इतने लोगों को बचाया, ये एक अपने आप में एक मिरेकल है।
0: Now, Captain Smith has revealed what really happened in the last few moments inside the cockpit. These are new details which are emerging now, wherein he is saying that the co-pilot said he wanted to pray, which is something which is usual in these planes. And when he went behind him to pray and he bowed down, he continued, Captain Smith continued facing forward while the co-pilot prayed behind him. Then he was suddenly hit hard on the back of his head, and he thought that the flight was experiencing a catastrophic damage. But then he realized that these blows kept coming, and it was his co-pilot which was attacking him and not the fault with the plane. He says that these blows left his vision severely blurred, and his vision was compromised, and he tried to fight back and he could barely see anything. But he did sense that the flight was plunging sharply, and then he managed to open the cockpit door once, but the co-pilot shut it. So this was the first attempt where he tried to open the cockpit door. He said he was lying on the cockpit floor, but he could hear that the aircraft was rushing through air, and he could hear passengers also screaming. He realized then, he says, that he had one last fight left in him, and he gave everything he had. He opened the cockpit door very bravely, and then he let people outside to come inside, who then waited and decided to pounce, and people entered the cockpit and took control of the flight. So this is what really happened in those last few moments. As Captain Smith is recovering, he's also mentioning more details now that are emerging from this. So now we know that it was actually the co-pilot who bowed down to pray behind him, but using that as a guise, he attacked Captain Smith and tried to derail the plane. This was when he realized that it was his own co-pilot attacking him, and he managed to open the cockpit twice, failing at the first attempt and then opening it for the passengers in the second attempt. Now we have breaking news coming in from Delhi, where a speeding SUV has rammed into elderly couple. 79-year-old couple is now seriously injured. This is Delhi hit and run case where a woman driver has been arrested and the car has been seized. The CCTV that we're showing you is capturing the shocking Kirti Nagar incident where this took place. The woman driver then fled after hitting the elderly couple. On camera, you can see that the driver steps out, looks at the victims and then flees, doesn't even offer to help. Accident was recorded on October 2nd around 9:30 a.m. Now the 49-year-old homemaker Navleen has been arrested. She's the woman who was driving the SUV. She's the one who can see in the car. She got out of the car after the hit and run but did not offer any help to this elderly couple. The elderly couple is 79-year-old Dayanand, who suffered head injuries after this. Dayanand's wife Kusum also suffered minor injuries. This was an elderly couple which is now out of danger. But at the time the couple was hit, while they were walking home after visiting religious site. Cops have registered a case and the SUV involved in the accident has also been seized. But these are the details that we're getting in. This is a CCTV from that very incident. For more on that, we have Himanshu joining in. Himanshu, ab hume khabar mil rahi hai Kirti Nagar se, jahan pe ek aurat jo hai apni SUV chalati hai aur ek elderly couple ko hit karti hai aur wahan se bhag jati hai. Wo unko help karne ke bhi offer nahi karti hai.
8: बिल्कुल, देखिए ये करंट सिचुएशन है जो हम देख सकते हैं. दोनों लोग आ रहे हैं सड़क के किनारे, बिल्कुल उजाला है, कोई ऐसा रश भी नहीं था सड़क पे कि हम कहें कि बहुत ज्यादा रश की कंडीशन हो. और ये एकदम से पीछे से आती हैं, टक्कर मारती हैं, दोनों लोग गिरते हैं, 70s में है अपने. उसके बाद वो गाड़ी से उतरती हैं, लोग भी उतरते हैं देखे. और वो एक बार उन्होंने दोनों को देखा, जो जेंट्स थे उसमें जो बुजुर्ग शख्स थे उनके सिर में भी चोट लगती है, हालांकि खतरे के बाहर है, लेकिन उस वक्त आप कुछ नहीं, उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना. जब भी इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है तो क्लियर होता है कि आपको जल्द से जल्द पीड़ित को डॉक्टरी जो सेवा है वो मिलनी चाहिए. लेकिन वहां पर वो चुपचाप वापस आती, गाड़ी स्टार्ट करती है और मौके से भाग जाती है. लोग जो वहां पर थे, इसके बाद उन्होंने पीसीआर को कॉल किया 112 पे. पीसीआर पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है, दोनों लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया. क्योंकि वहां पर जब पुलिस आती है तो पुलिस की पहली प्राथमिकता रहती है कि दोनों को जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा मिले. और उसके बाद फिर सीसीटीवी पूरे इंसिडेंट का निकाला जाता है. जब सीसीटीवी निकलता है, गाड़ी का नंबर आता है, तो महिला की पहचान होती है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अब पूरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है इस वक्त पुलिस देख रही है. नंबर एक, जो ये सीसीटीवी है हमारे पास है, जो इंडिया टुडे आज तक ने एक्सेस किया, जो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद का जो व्यवहार था एक्यूज्ड लेडी का वो कैसा था, ये आप देखिए कि आपने मारा, आप उतरे, आपने देखा, किसी ने आपको, ऐसा भी नहीं हुआ कि भीड़ से आपको खतरा हो, उसके बावजूद आप गाड़ी में वापस बैठे और आप वहां से मौके से निकल गए. इसके बाद अब पुलिस पीछे के सीसीटीवी निकाल रही है सिस्टमेटिकली, ताकि गाड़ी की स्पीड पता की जा सके कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी. नंबर दो, कोशिश ये भी है कि इसकी जानकारी मिल सके कि क्या महिला के हाथ में मोबाइल था, क्या वो डिस्ट्रैक्ट थी जिस वक्त वो ड्राइविंग कर रही थी. तो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है. जी,
0: देखिए दिल्ली में अब ऐसे हिट एंड रन केसेस और भी कॉमन होते जा रहे हैं, हर दूसरे दिन कोई नया केस आता रहता है. इसमें जो अक्यूज्ड है नवलीन, हमें उनके बारे में क्या जानकारी है और वो किस तरह की सजा अब उनको मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो कपल है उनको कुछ माइनर इंजरीज है बट वो सेफ है.
8: देखिए, इसमें जो आईपीसी की 279 दर्ज होती थी, यही धारा दर्ज होती है, बेलेबल धारा होती है. इसमें आमतौर पर जो आप जब थाने पहुंचते हो गिरफ्तार किए जाते हो और उसके तुरंत बाद आप अपने साथ जो है जो सिक्योरिटी निश्चित की जाती है, आप अपने साथ अपने लिए दो लोगों को लेके जाते हो और बेल ले लेते हो थाने से और थाने से आप चले जाते हो. लेकिन इस घटना ने, इस इंसिडेंट ने, जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जो एक्यूज लेडी का जो व्यवहार था वो जरूर सोचने की जरूरत है, लोगों को देखने की जरूरत है कि क्या अपनी, एक तो आपने गलती की और उसके बाद आप मौके पर उतरे, आपने देखा और आपने रुकने की जहमत तक नहीं उठाई, आपने उन्हें हॉस्पिटल, आपने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी वजह से वो दोनों सड़क पे गिरे, उन्हें कितनी चोट लगी, उनकी जान खतरे में तो नहीं है, उनकी जान जा सकती थी. तो ऐसे मामलों में पुलिस के साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है जो लोगों को समझनी चाहिए. अब आप देखिए, कुछ दिन पहले का ही एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक थार गाड़ी चालक जो है वो आगे एक तरफ जा रहा है और एकदम से उसने ओवरटेक किया. जब वो ओवरटेक कर रहा है तो पीछे से दो बाइक पे दो लोग बैठ के आ रहे हैं, उन्हें टक्कर लगती है, वो गिर जाते हैं. हालांकि उन्हें भी गंभीर चोटें नहीं लगी, लेकिन उस थार चालक ने मौके पर रुकने की, पलट कर देखने की, जानने की, समझने की कोशिश नहीं की. अगर कभी ऐसा होता है कि क्लियर है कि कभी कभी मौके पर रुकना खतरनाक हो जाता है, लोगों के गुस्से का सामना जो गाड़ी चालक है उसे करना पड़ जाता है, तो ऐसे में क्लियर है कि अगर आप मौके से भाग रहे हो स्पॉट पे खतरा बता के, तो आप पुलिस को कॉल कर दो कि मेरे से यहां पर एक्सीडेंट हुआ है और नजदीकी थाने आप चले जाओ, जहां पर जाकर आप सरेंडर कर दो, भाई एक्सीडेंट हुआ, मुझे डर लगा, लोगों की भीड़ थी, मेरे साथ कुछ हो सकता था, मैं थाने आ गया. ताकि एक चीज तो स्टैंड क्लियर हो जाए कि पहली चीज आपकी नीयत कैसी है, नंबर दो आपने शराब किसी इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, कोई नशे में तो नहीं है, ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि कुछ समय के बाद जो है आपके बॉडी से अल्कोहल अगर था तो वो तो मेडिकल टेस्ट में आएगा नहीं, आप तो बच निकले। तो इसलिए कई ऐसी चीजें जो बनाई गई हैं, लेकिन ऐसे में जब आप हिट करके भागते हो तो कई बार जो है पुलिस आगे की कार्रवाई में जब सबूत और अगर मिलते हैं पुलिस को और ये पता लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट थे ड्राइविंग के वक्त, तो पुलिस आगे कड़ी कार्रवाई कर सकती है। जी
0: बिल्कुल। सो नाउ वी लर्निंग दैट देयर कुड बी सीरियस चार्जेस बिकॉज इन दिस इंस्टेंट द अक्यूज्ड एक्चुअली फ्लेड फ्रॉम द साइट एंड डिड नॉट ऑफर एनी हेल्प। नाउ इन दीज इंस्टेंसेज यू कैन ऑफकोर्स अप्रोच द पुलिस इवन आफ्टर यू फील दैट द स्टॉपिंग देयर एंड ऑफरिंग हेल्प वॉज नॉट possible because of the traffic situation. Thank you so much for joining in with those inputs, Himanshu. Now the opposition versus CEC war over SIR continues to intensify. Congress President Mallikarjun Kharge has now termed all elections illegal and demanded the dissolution of Lok Sabha and state assemblies. Kharge has said that fresh elections must be held on ballot papers, alleging that BJP and RSS workers were involved in filling SIR forms. As the opposition continues its protests, the Thackeray cousins, Raj Thackeray and Uddhav Thackeray, are set to hold joint protest march against the CEC in Mumbai today. Now, this comes after the Kokra Janta Party stir in Mumbai. The National Human Rights Commission has now taken cognizance of the participation of minor children in the protest and their use as a shield to avoid or limit police action. The NHRC has also directed the Mumbai police to examine digital evidence and probe the matter. Meanwhile, the Delhi police has registered 3 FIRs over the protests at Jantar Mantar. The FIRs were lodged under sections relating to disobedience of an order issued by a public servant, obstruction of a public servant in the discharge of their duty, and use of criminal force against a public servant.
9: SIR देश के लिए गलत हो रहा है और गरीब लोगों के लिए और जो uneducated है, जो लोग मजदूर है और खास करके माइनॉरिटीज के लोगों को भी ये लोग निकाल रहे, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे मोदी जी।
10: आपने दिल्ली में देखा जो स्टूडेंट लोगों का प्रोटेस्ट था उसमें ये लोग गए थे, मुंबई में देखा, अभी कल का भी आपने सब यहाँ का मुंबई का माहौल देखा है। ये सिर्फ राजनीति है। निवडणूक आयोग के बारे में जो तीनों निवडणूक आयोग के प्रतिनिधि है उन्होंने प्रेस नोट निकाल के जो डिक्लेरेशन करना था, जो खुलासा करना था उन्होंने किया है। अभी ये खुद की पार्टी बढ़ाने के लिए किया हुआ प्रयास है।
11: राज साहब हो, उद्धव जी हो, ये बड़े लोग है, मैं छोटा MLA हूँ, लेकिन गर्जना मुंबई महानगर पालिका में मुंबईकरों ने बता दी है, तो इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा बोलना ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में ऐसी ही एक गर्जना हमने सुनने को मिली थी, लेकिन मुंबईकरों ने उनको साथ नहीं दिया था।
12: CJP के नेताओं को आंदोलन करना है, लोकतंत्र में अधिकार है, जरूर करें, पर जहां पर अस्पताल है, मरीज है, उस शिवाजी पार्क के आसपास के लोगों का, उनकी शांति भंग करने का, मरीजों को तकलीफ देने का क्या कारण? सुर्खियों में आने के लिए? आंदोलन करते समय एक सबूत आपने दिया नहीं, एक प्रमाण आपके पास नहीं है। झूठ फैलाने वाले भ्रम की टोली या राहुल गांधी जी से कड़ी शुरू होती है और दुर्भाग्य से उसमें ठाकरे भाई भी शामिल हैं।
13: कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक संगठन के इल्लीगल प्रोटेस्ट में शामिल करने के लिए बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप पे षड्यंत्र करके बच्चों को इस उद्देश्य के साथ बुलाया गया कि इल्लीगल प्रोटेस्ट में जब पुलिस की कार्रवाई हो, जब प्रशासन की कार्रवाई हो, तो बच्चों को शील्ड की तरह आगे कर दिया जाए। ये अजिंक करके एक आदमी है, एक आदमी दिपके, अभिजीत दिपके है, एक सौरभ है, उनके अगेंस्ट हमको इस प्रकार की शिकायत मिली है। हमने शिकायत को एग्जामिन किया, हमने पाया कि पर्याप्त एविडेंस शिकायतकर्ता ने दिए हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहले इस तरीके के षड्यंत्रों को तैयार किया गया और फिर बच्चों को शील्ड बना करके वहां पे उपयोग किया गया, जिसके वीडियोस सर्कुल।
0: नाउ Now we have breaking news coming in. This is Leader of Opposition Rahul Gandhi targeting Home Minister Amit Shah over the October 3 Jantar Mantar stir. Rahul Gandhi is saying that the Delhi police misbehaved with women and it is seeking answers from Home Minister Shah over police conduct. Student wing ISA is saying that women protesters were manhandled and the student wing ISA is saying that it has scribed manhandle and it is alleging groping of women by male cops. Serious allegations coming there. Rahul Gandhi is saying that cameras were snatched and journalists were dragged. Rahul Gandhi is saying that hundreds were detained at Jantar Mantar and he's asking to the cops, why hasn't an FIR been registered so far? Rahul Gandhi is questioning the Delhi police and saying that it comes under the Ministry of Home Affairs. So why has no action yet been taken on that case? This is all relating to the Jantar Mantar stir that happened yesterday, where we see a lot of protesters of left wing and student wing coming and protesting at Jantar Mantar against the CEC Gyanesh Kumar. And their allegations surfaced that some women were manhandled by the cops. For more on that, we have Mausmi Singh joining in. Mausmi, now we're learning that Rahul Gandhi is asking questions to Home Minister Amit Shah as well. And he's seeking, why hasn't an FIR been registered so far? What's really happening there?
14: So Rahul Gandhi put out that post last night. And there were protests erupting outside the police station where the protesters and there were journalists who were sitting there saying, alleging that one woman journalist was groped by an officer, and there were allegations by protesters as well that many male police personnel manhandled and misbehaved and abused women protesters and journalists there. And Rahul Gandhi perhaps escalating this and alleging that the misbehavior of the Delhi police the question needs to be asked to Home Minister Amit Shah. He must answer why this is the state of affairs, raking up the entire large of women's safety.
0: Right, so we're seeing that now Rahul Gandhi is raising questions over the conduct of Delhi cops in the stir that happened at Jantar Mantar yesterday, asking why an FIR has not been filed if women are alleging that they were groped and manhandled by the police. Thank you so much for joining in with those inputs, Mausmi. Now, a fresh political row has erupted in Bengal over Mamata Banerjee's leg injury in 2021. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has claimed that then-CM Mamata faked the injury, citing a medical report which he says raises serious questions about what really happened in 2021. He has also said the Bengal government will probe the matter. The report by Bangur Institute of Neurosciences records no fracture or dislocation, no abnormal changes or damage in the bone, no significant excess fluid in the knee and normal soft tissue around the knee. It only records osteoarthritis of the left knee. West Bengal LOP Rita Prata Banerjee has also attacked Mamata Banerjee over the report, saying that her politics is built on lies and that she is a skilled performance artist, adding that the caste was removed only after the elections took place. Mamata AITC has, however, rejected these allegations, questioning the authenticity of the report and accused the BJP of using Mamata's medical condition to malign her ahead of the bipoles.
15: ঘোষণা মানে বক্তব্যে বলেছিলাম 2021 সালে পুরো নন্দীগ্রামকে মুখ্যমন্ত্রী অপমান করেছিলেন, ওনার পা নাকি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, আমি বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট অফ রেডিও ডায়াগনোসিস ১১/৩/২০২১ no evidence of fracture oblique dislocation. আমি এটা নিয়ে বাকি কিছু বলছি না, সিআইডি তদন্ত করছে. আমি নির্বাচনী বিধি উঠে গেলে এই মিথ্যা প্রচারের জন্য আমরা নতুন করে তদন্ত করবো. এটা আমি 9 তারিখের পরে
16: জানাবো. If no bony injury or soft tissue hematoma he noted. So Dr. Banerjee, pathological liar, ये पैथोलॉजिकल लाई 1984 में जब चुनाव जीते थे सोमनाथ चटर्जी को हराने के बाद, तब पार्लियामेंट में जाकर उसने लिख दिए थे डॉक्टरेट, कहां से डॉक्टरेट, इस जॉर्जिया यूनिवर्सिटी बंगाल का एक अंग्रेजी अखबार में जब न्यूज आया सिटी कॉन्ग एमपी एज ए बोगस पीएचडी, तो उनका जो पैथोलॉजिकल लाई इसका मैंने ट्रेड बहुत पुराना है। तो ये चुनाव भी पूरा, ये जो आज बंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का रिपोर्ट है इससे साबित है कि कुछ नहीं हुआ था और फॉल्स क्लस्टर लगाए थे।
4: ये एकदम ये एकदम गलत बात, शुभेंदु अधिकारी को इतना नीचे गिरना नहीं चाहिए। और कोई भी अस्पताल के डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक नहीं किया जाता है किसी को, शुभेंदु अधिकारी गलत किया है ये बात उठा।
17: देखुन उपनिर्वाचनेर आगे मेलाइन करार चेष्टा करछेन বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। একটা গুরুতর জখম হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার পা, সেটা সবাই জানেন। এবং

0: भाई मैं जापान में हूँ और बाथरूमों को इतनी इज्जत दे रखी है इन लोगों ने कि मैं इमोशनली हो जाती हूँ एवरी टाइम आई एंटर एनी वॉशरूम. छोटे से छोटा बाथरूम हो, बड़े से बड़ा बाथरूम हो, प्लीज जस्ट सी.
1: An Indian content creator traveling through Japan was impressed by the thoughtful features in the country's public bathrooms.
2: उसके बाद जितनी भी मम्मियां हैं जो अपने बच्चों के साथ आई हैं बाथरूम करने, उनके लिए एक सीट है कि बच्चा आराम से उस सीट पे बैठे और मम्मी आराम से लैट्रिना लैट्रिना खेले, जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बुरी बात भी है क्योंकि लैट्रिन टाइम इज मी टाइम, बट सो थॉटफुल. अगली चीज देख के आपका दिमाग खराब हो जाए.
1: अंकिता साहिगल हाइलाइटेड फैसिलिटीज डिजाइन टू मेक वॉशरूम्स मोर प्रैक्टिकल एंड कम्फर्टेबल फॉर वुमेन, मदर्स एंड चिल्ड्रन बियॉन्ड देयर क्लीनलीनेस.
2: कपड़े चेंज कर सकते हो, मानो नीचे पानी गिरा हुआ है या नीचे गंदा है तो आप इस पे खड़े हो जाओ.
1: A US based woman has shared an emotional glimpse into motherhood at 40, documenting her life with her 4-month-old baby. Among their everyday routines and quiet moments, she also shared one unexpected part of their morning, reciting the Hanuman Chalisa. Aishwarya Rai Bachchan turned heads in an all-black look at Paris Fashion Week. At L'Oréal Paris Express Your World show, she also shared a warm moment on stage with Celine Dion against the backdrop of the illuminated Eiffel Tower. Victoria Beckham gave fans a hilarious behind-the-scenes glimpse ahead of her Paris Fashion Week show, casually walking on a treadmill in 4-inch heels. The designer was joined by husband David Beckham, making the workout moment even more entertaining.
3: So are you ready?
1: Paris Fashion Week's experimental spirit was on full display as Maytaya Fekil unveiled its Spring-Summer 2027 collection at Place Dalle Republic. The show's unconventional styling and theatrical beauty looks quickly caught the internet's attention. South Korea's Busan Sky Capsule has become a popular attraction among travelers drawn to its colorful private capsules and stunning coastal views. The elevated railway offers small groups a scenic ride above the coastline, making it a favorite among traveler creators.

0: अगर कोई झूठा फॉर्म 7 डाल रहा है तो इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहे कि आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, और अगर ये नाटक खत्म नहीं हुआ तो याद रखो दिल्ली के जंतर मंतर में जो मंतर नहीं पड़े वो मंतर हम हैदराबाद की रोड पर और गली कूचों में कर देंगे। तुमको बहुत परेशानी हो जाएगी। ये हरगिज इस बात को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जेन्युइन वोटर का नाम सिर्फ मुसलमान होने के नाते पर डिलीट अगर होगा फॉर्म 7 डालकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेगी। जब हमारे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है, 2002 की वोटर लिस्ट को देखकर हमने आवाम की रहनुमाई की, नोटिस आ रहे तो हमने एनामलीज को निकाला, अनमैप्ड है तो हमने मदद की, एएसडीडी की लिस्ट आई तो हमने जाकर देखा कि कोई जिंदा है तो उनसे फॉर्म 6 डलवाया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आंख बंद करके बीजेपी के लोगों को इस बात की इजाजत देगी कि नाम काटेंगे मुसलमानों के, हम हरगिज होने नहीं देंगे। बीजेपी और फॉर्म 7 डालकर नामों को डिलीट कराना चाहती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कह रहा हूं, अगर आप गैर जरूरी तौर पर इस तरह से बीजेपी के लोगों को नहीं रोकेंगे कि वो फॉर्म 7 डालेंगे, फॉर्म 7 डालेंगे तो नाम का डिलीट करना नाम को खारिज करने के बराबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम कह रहे हैं कि आप इसका नोट लीजिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना से और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर से भी मैं बता रहे हैं कि अगर ये होगा तो ठीक नहीं होगा। ईआरओ का काम यह है कि हर फॉर्म 7 को देखे और मालूम करे कि ये कौन दे रहा है दरख्वास्त फॉर्म 7 निकालने की।
1: Now for more on that, let me bring in Abdul Bashir, who's been tracking the story for us. Abdul, we're seeing already opposition mounting heat on the CEC, demanding for his resignation. Now a call from Hyderabad, Owaisi saying that there could be a massive stir, larger than what we've seen in Jantar Mantar over the Form 7 row.
2: Well, absolutely. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi has sounded a warning over the alleged misuse of Form 7. Now here, he said that speaking at the Jalsa in Miladun Nabi yesterday in Hyderabad, opposite Golconda Fort, Owaisi alleged that attempts are being made to get voters' name deleted by submitting Form 7 without properly furnishing the details of the person seeking deletion. Now here, Owaisi has urged the Election Commission of India and the Telangana Chief Electoral Officer and District Electoral Officer to act against what he termed as an improper practice. But the AIMIM chief did not stop there. He issued a strong warning saying that if the alleged filing of fake Form 7 do not stop, he would, Hyderabad would witness protests bigger than those held in Delhi's Jantar Mantar. For AIMIM, this has not become a major political or electoral issue, but Owaisi has made it clear that his party, that is Majlis, is not willing to remain silent. Now, this is a strong warning that has come out from AIMIM Chief Asaduddin Owaisi, who has been more vocal about the special intensive revision that is ongoing in the state of Telangana. As we can see that several Form 7 allegedly have been submitted, pre-printed forms have been submitted to the Election Commission for deletion of vote. And one such case study that India Today has done in Mushirabad constituency of Hyderabad, where 30 members of a family, their Form 7 was submitted by an unknown person, allegedly a BJP BLA, to delete these particular votes. And several such cases are coming up in the city of Hyderabad. And that is what AIMIM Chief Asaduddin Owaisi has shown a red flag about the Form 7 that is being submitted by a people.
1: Many cases of Form 7 being submitted by unknown people, especially in the story that was also tracked by India Today. So that is the alarm that Owaisi is raising, saying, warning that if you do not adhere to the proper guidelines, and they've been following the SIR process for so long, if they don't do that now, there could be a bigger stir than Jantar Mantar, he warns, in Hyderabad. Thank you so much for joining in with those inputs, Abdul. Now we have breaking news coming in. This is Union Minister Shivraj Singh Chauhan, who's attacked the Congress, saying he slammed Congress over the EC row. Shivraj Singh Chauhan is saying disrespecting public mandate is in Congress's DNA. He has slammed Kharge over illegitimate remark on PM and Home Minister. Shivraj Singh Chauhan is saying that calling PM or Home Minister illegitimate is an insult to democracy. He's accused Congress of weakening the constitutional institutions. He says that Congress wins, EC is fine, and when they loses, EC is flawed. Shivraj Singh Chauhan is questioning the Congress demand for ballot-based polls. Shivraj Singh Chauhan is saying, does Congress want to take back India back to the 80s and 90s, going back to the paper ballots? Shivraj Singh Chauhan has been defending the tech-based electoral process, saying that Congress has weakened democracy in past, and he's invoking emergency to attack Congress over democracy. He's saying that people will answer Congress through votes, and Congress's designs, intentions won't succeed. That's the latest remark that we're getting in from Shivraj Singh Chauhan. Listen into what he said.
3: आयुक्त को नियुक्त कर देते थे कांग्रेस के जमाने में। मैं फिर कहना चाहता हूं कांग्रेस खतरनाक खेल खेल रही है संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की। हार जाए तो संवैधानिक संस्थाएं गलत है, व्यवस्थाएं गलत है, उसको ध्वस्त कर दो, तहस नहस कर दो, देश को अराजक बना दो, ये पाप है पाप। लेकिन देश की जनता इस पाप का जवाब वोट से बार बार देती रहेगी। कांग्रेस के नापाक इरादे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हारने पर जनादेश का अपमान करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस के डीएनए में है। राहुल गांधी जी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अवैध कहा। ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है, ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है, ये लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा करना है, ये देश में अराजकता फैलाने का प्रयास है। ये कैसी बात करती है कांग्रेस? कांग्रेस चुनाव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक, और हार जाए तो चुनाव आयोग खराब। आखिर कर्नाटक में कैसे जीते, तेलंगाना में कैसे जीते, हिमाचल में कैसे जीते?
1: So that is Shivraj Singh Chauhan alleging that Congress always cries foul when it loses elections. Now for more on that, let me bring in Himanshu Mishra. Himanshu, अब Shivraj Singh Chauhan का बयान आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कांग्रेस हमेशा जब हारती है तभी वो चुनाव आयोग पे इल्जाम लगाती है, बट इस बार ये सब जो इनके इंटेंशंस है वो सफल नहीं होंगे।
4: देखिए बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान जो केंद्र सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से सीधा सीधा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और के ऊपर और कांग्रेस, उन्होंने सीधा हमला किया और कहा चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक, हार जाए तो चुनाव आयोग खराब। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस कैसे जीती है? उनका ये भी कहना है कि पत्र पत्रों से चुनाव की मांग कर कांग्रेस जो है देश को 80 और 90 के दशक में लेकर जाना चाहती है। टेक्नोलॉजी से चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आए, आखिर कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? तो तमाम तरीके से कांग्रेस और उनके पूरे जो आला कमान है उसके ऊपर पूरी तरीके से अटैक किया। जिस तरीके से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इलेक्शन कमीशन को लेकर जो है वो टारगेट करना शुरू किया।
1: बिल्कुल, तो नाउ वी आर गेटिंग टू लर्न दैट शिवराज सिंह चौहान इज माउंटिंग हिज अटैक ऑन कांग्रेस, सेइंग दैट दे ऑलवेज क्राई फाउल व्हेनेवर दे लूज इलेक्शंस, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू सक्सीड दिस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन विद दोस इनपुट्स, हिमांशु। एंड दैट्स ऑल दैट वी कुड पैक फॉर यू इन दिस बुलेटिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट्स यू कैन लॉग इन टू indiatoday.in और चेक आउट द इंडिया टुडे ऐप।
5: Are watching India Today.
6: How many of us have witnessed a man flashing us?
7: All of us. It's
6: how many of us have witnessed a man making obscene gestures at us?
7: All of us.
6: How many of us here have been felt up in a public space?
7: All of us.
6: How many of us have borderline been sexually assaulted? That's 100% count. How many of us usually never speak about it?

0: सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी कांग्रेस के हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने ये विश्वास मुझ में जताया है और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, मेरी चौथी पीढ़ी है ये कांग्रेस में, इस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। 2027 में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ेगा। ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा कि लड़ाई कहाँ पर, कैसे और कितनी होनी है। मैं इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगी कि मैंने पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत होते देखा है। जिस तरह से अभी संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ, और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश में जिस भी कोने में होगा, उसको हम निकाल करके लाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे।
1: देखिए, जो राहुल जी का, प्रियंका जी का निर्णय, जो पार्टी का निर्णय, खड़गे साहब का निर्णय, उसके ऊपर मेरा कोई बोलने का मतलब ही नहीं। जहां वो मुझे लगाए मैं वहां काम करूंगा।

0: बताइए आप मुझे अपना नाम बताइए कौन है आप
1: It's 10:30 p.m. I was trying to approach a metro station at Lajpat Nagar, trying to take public transport home, which most women like me do at this hour. And sadly so, the story on the roads of Delhi doesn't seem to change. The Delhi police commissioner had promised that every arterial road will have a PCR. Well, there was a PCR here, standing right there, if my camera person can actually show you. And while I was walking up to the metro station, I was teased, I was harassed by three young men. The minute they saw headlines today, cameras, they scooted.
2: पांच लड़के हमसे मिसबिहेव किया था, बिल्कुल हमारे से मिसबिहेव किया था उधर. आपका PCR वैन बिल्कुल पीछे था. आप सर तब से दो घंटे हो गए हैं उस इंसिडेंट को. हाँ जी? उस इंसिडेंट को हम 10:30 पे थे, अब 12 बज रहे हैं. पेट्रोलिंग पर अगर मोटरसाइकिल निकल रही थी, हम वहाँ पर ही खड़े हुए थे सर, उधर. ये बिल्कुल हम स्टेयर्स मेट्रो स्टेशन में हम जा रहे थे, सामने सामने उधर. तो और आपका सर अभी तक मूव नहीं हुआ है यहाँ से PCR. हमने वेट किया कि आप देखेंगे, क्योंकि वो आए हमसे, हमारे से उन्होंने छेड़खानी की.
3: मिल जाती है, उस पे जाती है गाड़ी, उसके बाद स्ट्रेट खड़ी करी.
2: सर आप लोग देखते नहीं है आपके बिल्कुल सामने क्या हो रहा है?
3: मोटरसाइकिले भी है
2: सर यहाँ पर. आप अभी तक एक मोटरसाइकिल नहीं पास हुई है, हम तब से यहीं पर ही हैं.
3: मोटरसाइकिल भी सब कुछ है.
0: आपने उन दिल्ली पुलिस ने वादा किया था आपसे हमसे कि सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ेगी, बीच स्टाफ ज्यादा मौजूद रहेंगे सड़कों पर, बसेस पर जितने भी नियम है उनका पालन किया जाएगा, ऑटो रिक्शा को लेकर जरा सख्त रवैया अपनाया जाएगा. लेकिन क्या वो सब कुछ हो रहा है, यही जानने समझने की कोशिश करेंगे. तो बाइक में सवार होकर ये देखिए, लगभग 10 बजे के आसपास बाइक पर सवार होकर

0: कचड़ी कचौड़ी खा ली, समोसे खा लिए, कोई पाप थोड़ी है, इंजॉय करो। तो बीच बीच में आकर से मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई मुझे दिन वालो शराबी ना समझो।
1: हम इंडियंस बहुत दिल वाले हैं, बट हमारे हार्ट्स इतने वीक क्यों हैं? Why do Indians get heart attack 10 years earlier than the West?
0: There is genetics in it, वो तो है ही, और साथ में हमारे वो risk factors भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है, जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में हर एक के कोलेस्ट्रॉल विच इज लिपिड प्रोफाइल तो 10 साल की उम्र में हो जाने चाहिए।
1: 10 years?
0: हाँ।
1: A lot of times television headlines become out the fact कि ये देखिए ये एक्सरसाइज करते थे, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इसलिए इनको हार्ट अटैक आ गया। कितनी एक्सरसाइज इज ओके एंड वेयर डू यू नीड टू स्टॉप?
0: अगर हम सडनली सिवियर एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमारे आर्टरीज है कैसी। माइनर ब्लॉकेजेस जो हमें सिम्टम्स नहीं दे रही हैं, सडनली विद सिवियर एक्सरसाइज हार्ट अटैक कर सकती हैं। यू मे रिमेंबर वन ऑफ द सेलिब्रिटीज हु एक्सरसाइज फॉर 2 hours एंड सडनली कोलैप्स एंड डाइड, एंड एवरीबॉडी सेड वो तो इतना यू नो एक्सरसाइज करता था, वो तो 2 साल से क्या उसकी मसल से क्या था, एंड नोबडी न्यू दैट ही एक्चुअली स्मोक्ड 15 सिगरेट्स अ डे। वो जो हम देख रहे हैं ना कहीं डांस करते हुए कोलैप्स कर गए, they could have actually been smokers because smoking itself precipitates clotting in the even normal arteries.
1: Yeah.
0: 25 saal ke ladke heavy smoking ke baad maine dekhe heart attack hote hue jinki arteries full of clot hoti hai, blockage to hoti bhi nahi hai, kyunki heart attack ka reason hi kya hai? Hamari arteries mein blockages thi. Sochiye ki pipe hai hamare ghar ki, wo pehle se hi narrow ho rahi thi, kachra phasa aur pani band hua, suddenly artery band ho gayi.
1: How do I know that if I have uncontrolled BP?
0: You asked a very right question. And किसी लोगों को पता भी नहीं है घर में चेक कैसे करते हैं।
1: I did not know that TMTs are 40%

0: important, and in fact both the symptoms can mimic each other. We are missing out 15% of heart attacks, and people are damaging their heart thinking ki wo gas thi aur shayad wo rajma kha liye the raat ko ya main bahar khane chale gaye the aur puri raat wo gas ko samajhte rahe, digestion khate rahe. By the time they land up in the hospital, their heart is badly damaged because 8 to 10 hours have passed by.
1: The biggest mistake that Indians make when it comes to their heart.
0: Khabraat hui, स्वेटिंग हुई और सोचा कि हार्ट अटैक है और सॉर्बिट्रेट दे दी. सॉर्बिट्रेट इज एक्चुअली द वर्स्ट ड्रग फॉर हार्ट अटैक. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग जो आप खुद ले सकते वो है
2: Welcome to Doctor vs. Internet. I'm Sonal Mehrotra Kapoor. Today I have with me a doctor who I've waited a long, long time to bring him on the podcast. If I say heart health, there is one doctor who's a household name in the country. Dr. Ashok Seth is not a doctor. He's an institution. What he's done for heart health, how he propagates about it, and what he's really turning the entire health industry into is commendable. And today when he sits down with us, I wanted to do something which is different from what he's already spoken. Itne sawal hote hain hamare aur aapke dimag mein, but one thing that has often like sort of got into my head is, why do Indians get heart attack 10 years earlier than the West? Are we genetically more inclined towards a weaker heart? Are women's heart different than the way a man's heart responds? And there's no romance in that. I'm purely talking about biology here. What about these high intensity programs like HIROX, like HIIT? What are they doing to our heart? Why is it that we still haven't figured out that young people are dropping dead in their gyms? Or perhaps not very old people dying in their sleep? These are all very fundamental questions, but perhaps a time we bring you all the answers in one podcast. Aisa kya hai jo hum samajh nahi pa rahe ki fit rehne mein aur disease free rehne mein kitna farak hai, and how do we actually get there? So with that, Dr. Seth, how are you doing?
0: Very well, Sonal. In fact, main coffee isliye pee raha hu that I've got to keep up with your exuberance. And let me just say ki, you know, your wonderful podcast, very informative. मैं कई दिनों से वेट कर रहा हूँ कि कब सोनल इनवाइट करेगी अपने पॉडकास्ट के लिए. That is actually the other way around.
2: That is really, really sweet. Thank you so much. But let me dive in straight with the question.
0: Right.
2: हम इंडियंस बहुत दिलवाले हैं, but हमारे hearts इतने weak क्यों हैं? Are we genetically weaker? Our hearts are genetically weaker than the West.
0: That is absolutely correct. There are two aspects to it. Yes, there is genetics in it. वो तो है ही. और साथ में हमारे वो risk factors भी सबसे ज्यादा है world में. So let's just consider genetics. क्या है? दो तीन चीजें genetics में आती. एक तो हमारी body habitus. आपने सुना होगा कि मैं आपको toffee के बारे में बताता हूँ. Toffee तो बढ़िया में बड़ी मिलती है. Toffee is bad for heart. But जो हम toffee की बात करते हैं heart disease में, that is related to thin outside and fat inside. तो हम लोग जो हैं हिंदुस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में, वी आर एक्चुअली हमारे ऊपर से पतले लगते हैं. हमारे पैर पतले होते हैं, मसल्स कम होती हैं, सब कुछ लगता है, बट अंदर से मोटापा ज़्यादा है. जो एडिपोज टिश्यू जो हम कहते हैं, जैसे कि हमारा पेट ज़्यादा निकला होता है, लिवर के अराउंड, हार्ट के अराउंड, इंटेस्टाइन्स के अराउंड फैट ज़्यादा होता है. और ये जो विसरल फैट है, जो जेनेटिकल है, हमारा जेनेटिक्स के हिसाब से वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है. तो हम चाहे पतले भी लगते हो और बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से हम चाहे 25 और 23 के बीच में हो, बट फिर भी हमारी नुकसान हो रहा है हार्ट का. और ये एक जेनेटिक्स है हमारा. इसीलिए वही चीज हमारे लिए रेज ट्राइग्लिसराइड्स को रेज करती है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को लो करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, वही नुकसान हमारे को हार्ट को करती है, एथरोस्क्लेरोसिस. इनफैक्ट ये एडिपोज टिश्यू देखा गया है कि जो पेट का मोटापा होता है, इंटेस्टाइन्स के अराउंड एडिपोज टिश्यू होता है, लिवर को हार्म करता है, हार्ट को हार्म करता है, और ये कोई इन्फ्लेमेटरी पदार्थ प्रोड्यूस करता है जो हमारी आर्टरीज को डैमेज करते रहते हैं और एथरोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूस करते हैं।
2: करेक्ट, सो दिस विसेरल फैट लोगों को समझ में नहीं आता।

0: That's why I want to spend some मतलब, time हाँ, on it.
1: So idea ये ले लें कि एक हमारा मोटापा है जो हमें चारों तरफ दिखता है. Overall हम पूरे मोटे हैं. और एक है कि ऊपर से तो पतले लग रहे हैं, but अंदर हमारे intestines के around जो दिख नहीं रहा है, वहाँ पे फैट डिपॉजिट हुआ हुआ है. लिवर जो हमें दिख नहीं रहा है उसके अराउंड फैट डिपॉजिट हुआ हुआ है. हार्ट जो दिख नहीं रहा है उसके अराउंड फैट डिपॉजिट हुआ है.
0: और आपने कुछ करा नहीं है इसको करने के लिए. जेनेटिकली और मोर
1: इंक्लाइंड.
0: ओके,
1: सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. इसीलिए हिंदुस्तान में पेट का मोटापा ज्यादा दिखता है. तो हम क्या कहते हैं कि मोटापा क्या है हिंदुस्तान में, जो वेस्ट के फिगर्स है कि BMI होना चाहिए 30 से ऊपर, तो इंडिया में तो फिट करता ही नहीं है. और BMI छोड़ दीजिए, सिंपल फैक्ट अगर मैं कहें कि हिंदुस्तान में मोटापा क्या है, तो आप अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर कर लो, क्योंकि वो आपका मोटापा है.
0: करेक्ट,
1: दैट इज द विसरल फैक्ट कि आदमी में, एडल्ट में अगर और मैं कहूंगा सिर्फ
0: वेस्ट रेशियो
1: 90 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो एडल्ट में, विमेन में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तो सोचिए कि वो विसरल फैट मेजर कर रहा है आपका. और हमें कोई BMIs वगैरह मेजर करने की जरूरत नहीं है.
0: BMI इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड एनीमोर, दैट्स बीन एस्टैब्लिश्ड. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट यू आर सेइंग मोटापे का लिंक डायरेक्टली टू योर हार्ट. दैट इज सो इंपॉर्टेंट.
1: और पेट का मोटापा जो अंदर का मोटापा,
0: अंदर का मोटापा.
1: दूसरी जो जेनेटिक्स की बात है जो अब ज्यादा रियलाइज हो रही है, आपने सुना होगा LPA. LPA एक लाइपोप्रोटीन है, एक ब्लड में मेजर होता है. और आजकल उसके बारे में कई काफी बातें हो रही हैं. अब वो LPA देखा गया है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. पहले सोचते थे कि अगर फैमिली में चल रहा है तो शायद एक मार्कर है जिससे पता चल जाता है कि शायद हार्ट डिजीज ज्यादा होगी. अब ये एक मार्कर, ये अब ये रिस्क फैक्टर है. और हमारे हिंदुस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में ये वेस्ट से ज्यादा पाया जाता है. तो दिस इज अगेन जेनेटिक्स. हमारे लोगों में LPA बहुत हाई है. अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं हुई है, बट एटलीस्ट ग्रुप्स में देखा गया है और दूसरे कंट्रीज की पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में देखा गया कि हिंदुस्तान में LPA ज्यादा होता है. और ये LPA सिर्फ अगर वेस्ट में LPA हाई हो तो अगर हम कहेंगे कि डेढ़ गुना रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया, बट हिंदुस्तानी में ये भी देखा गया कि LPA सेम लेवल का LPA हाई हो तो हिंदुस्तानी में 3 गुना ज्यादा हार्ट डिजीज हो जाती है. सो वी आर सफरिंग फ्रॉम 2 साइड्स ऑफ जेनेटिक्स. और फिर वो जो बात आई कि और क्या चीजें हैं हिंदुस्तानियों में, तो वो तो क्लियर है. वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन. 30% एडल्ट्स अबव द एज ऑफ 30 हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं. और मैंने कह ही दिया कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हमारे बड़े में, स्पेशली लो HDL कोलेस्ट्रॉल और रेस्ट ट्राइग्लिसराइड्स. तो एक्चुअली यही है हमारा जीन्स और यही है हमारी किस्मत. सो एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेटली.
0: That's a lot to process.
1: I didn't mean to frighten anybody, but it's a good start.
0: I'm very glad you brought it up because it's a good start. Because if we don't even identify that as a problem, देखिए problem क्या है डॉक्टर सेठ, कि इंडिया में लोगों ने ऐसे ले लिया है कि अब उम्र होगी है बीपी तो होगा, उम्र हो गई है वजन तो बढ़ेगा, डायबिटीज तो हो ही जाएगा, दवाई खाते रहेंगे ठीक रहेंगे. दैट माइंडसेट, आई डोंट नो इफ यू आर सीइंग इन योर क्लिनिक, आई एम सीइंग इन पीपल अराउंड मी, दैट माइंडसेट इज शिफ्टिंग. यंगर पीपल आर नाउ सेइंग दैट लिसन, आई डोंट वांट टू लिव विद ब्लड प्रेशर, आई वांट टू इंश्योर आई कैन डिले इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल बिकॉज जेनेटिकली आई नो आई एम गोना गेट इट.
1: करेक्ट,
0: डायबिटीज रन्स इन द फैमिली, ब्लड प्रेशर रन्स इन द फैमिली, आई एम गोना गेट इट वन डे. But how do I ensure that I delay it as long as possible?
1: And I think it's a good mind shift.
0: Yeah.
1: And it's happened in 2 ways. Ek to more education's happening through,
0: yes,
1: through exactly what you're doing today is happening. And the other factor is, of course, those visuals of people suddenly dying, collapsing, etc., which is coming up more because of social media, etc., which used to happen earlier. But more, uski wajah se, log kehte hain. In fact, patients come to me now, young ones, between 30 and 40, kehte hain ki kyun hai? Ye test karaya hai. क्योंकि मेरे किसी दोस्त को ये हो गया है, क्योंकि मैंने वो विजुअल देखा जिसपे ऐसे हो गया था, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैंने सोचा अपने टेस्ट करा लूँ. नाउ दैट इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी हैव सीन 10 इयर्स अगो.
0: या या, एंड आई जस्ट वांट टू से दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स टेलीविजन हेडलाइंस बिकम आउट द फैक्ट कि ये देखिए ये एक्सरसाइज करते थे, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इसलिए इनको हार्ट अटैक आ गया है. ये क्या मिथ बस्ट कर सकते हैं?
1: एब्सोल्युटली.
0: एक्सरसाइज का और हार्ट हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है? कितनी एक्सरसाइज is okay and where do you need to stop?
1: So, इसमें दो भी चीजें हैं. ये तो यू आस्क द राइट क्वेश्चन कि व्हाट इज गुड एक्सरसाइज एंड व्हाट इज गुड हार्ट हेल्थ, बट ऑल्सो क्या उस आदमी को वीडियो खींच रहा होना चाहिए था? शुड नॉट ही बीन रिससिटेटिंग दैट पर्सन जो सामने कोलैप्स हो गया? द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम टू माय माइंड एंड आई एम इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट दैट पर्सन जिसका वीडियो खींचा जा रहा था कुड हैव एक्चुअली बीन सेव्ड बाय द पर्सन जो वीडियो खींच रहा था. वही
0: इंटरवेंशन
1: एक दो मिनट में उसकी सेव्ड लाइफ. But anyway, let's come back to this. Heart health and body building, physiques are two different things altogether. Ek to muscle building hai. And that is, of course, increasing with increased gyms. Aap dekh hi rahe ho, looking fit, etc. That's looking fit. But it doesn't mean your heart is actually fit. Jo andar ho raha hai, uska pata karna bahut zaruri hai. It is not, taking all those steroids, etc. for building your body is one aspect of that. But the other aspect is ki ye bhi de hai, which is well-known fact, ki agar hum severe exercise karte hain, agar hum suddenly severe exercise, heavy weight lifting, ya extreme sports karte hain, suddenly, to hume pata nahi hota ki humare arteries hai kaisi, humare andar blockages hain ki nahi hain. And even any minor blockages, jo hume symptoms nahi de rahi hain, suddenly with severe exercise, heart attack kar sakti hain. Agar hum smoker hain, to severe exercise hume heart attack kar sakti hain. Kyunki severe exercise se ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, आर्टरीज पे स्ट्रेन पड़ता है, और वही ब्लॉकेज जिसने एक्सरसाइज हार्ट अटैक करना ही नहीं था वो सडनली हार्ट अटैक करती है. सो हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि अगर हम सीवियर एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग पे जा रहे हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि एडल्ट में हमने जिम हमें हाफ मैराथन रन करनी है, तो हार्ट का चेकअप बहुत जरूरी है प्रायर. एंड देन वी स्टार्ट ग्रेजुअली और धीरे धीरे हम बिल्डअप करें. नॉट कि किसी दिन कहा यार उसकी तो शेप बॉडी की बड़ी अच्छी, अब मैं चलता हूँ जिम और मैंने उठाना है 50 किलो, और साइड में देखा कि उसने 70 किलो उठाया है. तो कहते चलो एक बार 70 भी उठा के देखा
0: जाए.
1: Yes, there are a few other conditions जो हार्ट की होती हैं, genetically run करती हैं, family में run करती हैं, और वो पता चल जाता है कि family में किसी को sudden death हुई है कि नहीं. ये arrhythmias होते हैं, हार्ट की मसल की conditions होती हैं, वो कई बार severe exercise में precipitate हो जाती हैं. इसलिए 30 साल के बाद तो कहूंगा ये collapses जरूर हार्ट अटैक की वजह से हैं. Less than 30 years, it could be any of those genetic disorders as well as rare episodes of heart attacks.
0: Yeah.
1: You know, smokers में तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं. You know, you may remember one of the celebrities who exercised for 2 hours and suddenly collapsed and died. And everybody said, वो तो इतना exercise करता था, वो तो 2 साल से क्या उसकी muscles ही क्या था. And he was only 42, etc. And nobody knew that he actually smoked 15 cigarettes a day.
0: Yeah.
1: And smokers mein to, I get this regularly. Absolutely perfect life. 45-year-old kehta hai ki ji main to sab kuch theek karta hu. Khana dekhiye mera Mediterranean diet. Main to isko chhod diya, wo chhod diya. Looking absolutely fit. Main 15 kilometer jog karta hu. Main kehta hu, I'm scared about you. Because, what's wrong with you? Acha, smoke karte ho? Haan, smoke to karta hu. I said, I'm scared about you. Ki tum exercise kar rahe ho 15 kilometer. Yun hoga, ek din suddenly clot aayega and you'll collapse and die. Why are you smoking? This is the sadness of it, because smokers have that sudden cardiac death. Wo jo hum dekh rahe na kahin dance karte hue collapse kar gaye, they could have actually been smokers, because smoking itself precipitates clotting in the even normal arteries. 25-25 saal ke ladke heavy smoking ke baad maine dekhe heart attack hote hue jinki arteries full of clot hoti hai, blockage to hoti bhi nahi hai. And then we actually on the angioplasty table are extracting those clots, trying to actually prevent the heart damage. Or wo heart damage, I've got so many patients, at least I must have 1,000 young people between the age of 20 to 25, or even more, jinke heart attacks hue sirf smoking ki wajah se, jinka heart itna damage ho gaya ki unka normal heart functioning. वो बोले हार्ट अटैक्स बड़ी डेंजरस होते हैं, बिकॉज दे हैपनिंग ऑन नॉर्मल आर्टरीज, सडनली आर्टरी बंद हो गई.
0: इज वेपिंग आल्सो इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग?
1: वेपिंग इज बैड. वेपिंग ऑल टेकिंग अवे इज निकोटीन पार्ट ऑफ इट, बट सॉरी पेपर पार्ट ऑफ इट. इट्स जस्ट टेकिंग वो जो बैड प्रोडक्ट्स ऑफ द पेपर इज टेकिंग, बट इट डजंट टेक अवे द अदर बैड इफेक्ट्स ऑन द आर्टरीज ऑफ द हार्ट. सो वेपिंग इज जस्ट अ कंसोलेशन of trying to make it more socially acceptable, but still continuing to harm us and harm you और अगर ये करते रहे तो हार्ट अटैक आएगा ही. एंड दैट हार्ट अटैक, बाय द वे, एवरी हार्ट अटैक इज शॉर्टनिंग अ लाइफ. सो समटाइम्स फील बैड फॉर दैट 20-25 ईयर ओल्ड जिसको हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वो जो 80-90 साल की लाइफ होनी थी, मे बी 100 साल की, गेट्स कट डाउन टू 50 years, 60 years ओनली.
0: Yeah.
1: It's sad.
0: Yeah, but every time people say this about smoking, my mind triggers into this other problem, which is that if I stay in Delhi, I am a smoker, sir.
1: वो तो है ही.
0: If I'm, you know, breathing in this polluted air, so we are all at risk.
1: मैं तो सबको लगता डरा रहा
0: हूँ. No, it's good to know. I really hope, I know what you're saying, but I really hope the purpose of this conversation is that we are able to, you know,
1: put a perspective.
0: No, get the right knowledge. And for us to push our government also to say that, listen, my health, just by breathing, I'm taking away like 8-10 years of my life here, right?
1: Pata hai main smokers ke liye kya kehta hu?
0: Kya?
1: Aap to smoke chhod di. Now don't even mix with smoke the friends who smoke. Kyunki aap passive smoking bhi karte rahoge na, 30% increase in risk of heart attack aapko ho jata hai. Aapka dost smoke kar raha hai. Kya yaar? अब छोड़ो स्मोकिंग, गिव इट अप. निकोटीन इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट वी एक्चुअली सीन इन लाइफ. लेट्स नॉट इवन पैसिवली स्मोक. बट यू राइट अबाउट दिस पॉल्यूशन. यू कह रही है वो भी तो एक सिगरेट रोज की पी रहे हैं हम लोग.
0: एक नहीं सर, मतलब वर्स्ट कंडीशंस इट्स 22-23 सिगरेट्स अ डे.
1: सो दिस पॉल्यूशन ऑफ कोर्स इज समथिंग we need to take very seriously.
0: जो आपने एक LPA test के बारे में बोला, I think it's very important to clarify. It doesn't cost too much and you have to get it once in a lifetime, right? To just understand. Would you suggest that young people, when you say should know more about themselves, get these tests done?
1: Absolutely. देखो, prevention of heart disease is no rocket science. And I would say, any government initiatives are needed. In fact, it's the cheapest thing to do. And I'll explain that. In my own life, it's the cheapest thing to do in everybody's life. But let's consider this. Ki test hi kabhi hone chahiye, which it also includes the LPA. So we say once in a lifetime is correct. But clearly, Hindustan mein har ek ke cholesterol, which is lipid profile, to 10 saal ki umar mein ho jane chahiye. Because heart disease to start hoti hai very early. Deposits to start hoti hai very early.
0: 10 years.
1: It has been actually seen. Ki jinko cholesterol ki tendency hai, jinke high cholesterol chal rahe hai, jinki family mein heart disease chal rahi hai. Aur jinki ek history hai family mein, ki father, mother at an early age in life, less than 55-60, ya to heart disease hui hai, ya deaths hui hai, ya bypass surgeries ho gayi hai, ya siblings mein, ya unke siblings mein.
0: Which is practically 90% of North India.
1: Exactly. To ye to karna hi hai. Aur unke sabke liye karna hai. It's now a standardized care. The second aspect is ki agar sab kuch theek nikla, tabhi to wo familial hypercholesterolemia ye wo pick up ho jata hai jo early in life, jise tabhi se treatment shuru ho jaye to future mein hum bach sakte hain.
0: Yeah.
1: But agar wo sab theek nikla, to then by the age of 20, again becomes a must. And then hume pata hi hai ki heart disease to badi early shuru hoti hai, to agar nikla theek, to 5-5 saal pe aap test karate rahiye. Aur 30-35 saal ke baad to har saal ek par cholesterol ke test karaiye. Now, sirf cholesterol ki baat nahi hai. And we know ki hai, humne LDL karna, humne HDL karna hai, triglycerides karne hai, LPA karna hai. But LPA to ek baar zindagi mein kara liya, because that test does not change. बात रही रिस्क फैक्टर्स की पता करने की, और कोलेस्ट्रॉल तो एक ही रिस्क फैक्टर है, तो साथ साथ हमें शुगर का भी टेस्ट करा लेना चाहिए और साथ में एक बार बीपी चेक करा लें. अगर ये तीन रिस्क फैक्टर्स हमें पता हो, तो हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि हार्ट डिजीज प्रिवेंट करना तो हमारे हाथों में है. हम कहते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, यू नो, वी वांट ह्यूज नंबर ऑफ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह. बट अगर ये तीन रिस्क फैक्टर्स हम रेगुलरली जानते रहे, तो हार्ट डिजीज हम खुद प्रिवेंट कर सकेंगे. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अपना ख्याल रखना तो हमारे हाथों में है. द अदर थिंग, ये जो ये मैंने कहा कि बीपी चेक करने की बात, तो बीपी चेक तो हमें पता ही है कि हाल ही कंट्री जब बीपी डायग्नोज भी होता है, तो 50% लोग के तो अनकंट्रोल बीपी चल रहा है. धीरे धीरे किडनी डैमेज होती रहती है. कहते हैं एक गोली खा रहे, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं. कोई कोई डॉक्टर कहता है कि जी आपका बीपी अनकंट्रोल है. नहीं नहीं, घर में तो बड़ा ठीक चलता रहता है, जब भी हम मेजर करते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है. हमें तो पता चल जाता है, एक सर हेडेक होता है तो बीपी हाई है. तो ये सब कितनी मिथ्स हैं जो चल रही हैं, और किसी लोगों को पता भी नहीं है, ज़्यादातर लोगों की बीपी के घर पे चेक भी कैसे करते हैं. वो मशीन ने दिखा दिया, उसी में खुश रहे.
0: हाउ डू आई नो दैट इफ आई हैव अनकंट्रोल्ड बीपी और घर की मशीन में ठीक दिख रहा है?
1: ओ, घर की मशीन में इसलिए कि हम ठीक से बीपी मेजर नहीं करते हैं। आई थिंक यू आस्क अ वेरी राइट क्वेश्चन एंड लेट मी जस्ट क्लोज दिस। घर में चेक कैसे करते हैं? ठीक है, ज्यादातर लोग आपने सुना ही होगा कि घर में मशीन रखी हुई है और कहते हैं जी हम रेगुलरली चेक कर रहे हैं, बड़ा ठीक आता है घर में, आपके यहाँ आते हैं तो फिर हाई हो जाते हैं। यस दैट्स अ फैक्ट, नॉट अ मिथ। बट कितना हाई होता है? अगर मेरे को 180 मिल रहा है, जो कि रियली वेरी हाई बीपी है, तो आपका घर में 110 कैसे हो सकता है? 10-20 मिलीमीटर का तो वेरिएशन होगा ही। सो रियली वहा द वेयर चेक इज, टेबल पे बैठिए, आराम से टेबल पे बैठिए, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ। बट सोनल के साथ बात नहीं करनी है उस टाइम पे। इनफैक्ट उससे पहले ना, और ये कॉफी भी नहीं पीनी होती उसके साथ, उससे पहले कोई हैवी खाना भी नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं पीनी है। इट शुड बी इन अ रिलैक्स सिचुएशन जिसमें आप किसी से बात ना कर रहे हो। ये नहीं कि घर में झगड़ा हुआ है उसके बाद कहा कि बीपी अब चेक कर लीजिए। सो अब आप उसको रखिए हाथ पे, बी कंफर्टेबल इन द चेयर कंफर्टेबली। बीपी इंस्ट्रूमेंट भी उसी लेवल पे होना चाहिए जिस तरह आपका हाथ है, और हाथ आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए जो कि ये है आपका निप्पल, आपका हाथ है।
0: सो दिस लेवल इज फाइन,
1: दिस लेवल इज फाइन। उसके बाद आपने कफ जो बांधना होता है वो ये आपकी जो एल्बो है उससे अप्रोक्सीमेटली 1 इंच या 2 सेंटीमीटर ऊपर आपका कफ है। आजकल हर कफ पे एरो बनी होती है कि आर्टरी कहाँ पे है। आर्टरी होती है, अगर ये ले ले क्रीज तो उसका 2/3 और 1/3 अगर ज्वाइन कर ले वहाँ पे आर्टरी होती है, वहाँ पे एरो लगा दे, फिर आप अपना बटन दबाएं और आपका ऑटोमेटेड बीपी चेक हो रहा है। जब ऑटोमेटेड बीपी चेक हो रहा है तो आप रिलैक्स रहिए, आपकी एक ब्लड प्रेशर रीडिंग आएगी, आप उसके बाद 3 मिनट बाद से 5 मिनट बाद दूसरी रीडिंग लीजिए और एक थर्ड रीडिंग लीजिए और उसका एवरेज कर लीजिए। और आपने अगर आपने रियली समझना है कि आपका बीपी है कि नहीं है, अगर अच्छी रीडिंग आई तो अच्छा है, आपने कभी कभी बीच में चेक कर लिया, अदरवाइज अगर आपने रियली करना है और अगर देखना है कि आपका कंट्रोल ठीक है कि नहीं, तो दिन में 2 बार, रात के खाने से पहले और सवेरे के खाने से पहले, सवेरे के ब्रेकफास्ट से पहले।

0: सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी कांग्रेस के हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने ये विश्वास मुझ में जताया है। और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, मेरी चौथी पीढ़ी है ये कांग्रेस में, इस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। 2027 में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ेगा। ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा कि लड़ाई कहाँ पर, कैसे और कितनी होनी है। मैं इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगी कि मैंने पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत होते देखा है। जिस तरह से अभी संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ। और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश में जिस भी कोने में होगा, उसको हम निकाल करके लाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे।
1: देखिए, जो राहुल जी का, प्रियंका जी का निर्णय, जो पार्टी का निर्णय, खड़गे साहब का निर्णय, उसके ऊपर मेरा कोई बोलने का मतलब ही नहीं। जहां वो मुझे लगाए मैं वहां काम करूंगा।

0: are watching India Today.
1: Good evening and welcome to India Today. I'm Anjali Istwal. Let's take a look at the top headlines of this hour. Israel Prime Minister Netanyahu speaks to Captain Smit Machar on video call. Captain Smit narrates horrific cockpit ordeal. Indian Embassy in UAE says Indian Braveheart recovering well and remains under excellent medical care.
2: Ambassador Shelley, I told him that the next flight that will come to Israel is welcome he and his wife and his kids to your office, and I think it will be a big celebration.
3: Indeed. I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends. I really would like them to bear a celebratory flame.
1: BJP targets Congress over silence on Captain Smit Machar. Asked why Gandhi First Family is mum over Captain Smith's valour, demands answers from Congress's top leadership. Congress Chief Mallikarjun Kharge terms all polls illegal, demands dissolution of Lok Sabha and state assemblies. Thackeray's hold joint protest in Mumbai. Former Sarpanch killed in Ludhiana by bike-borne miscreants. This after influencer and makeup artist Matt Sandhu was shot dead in Amritsar. Congress says law and order collapsed under Mann government. Keralam Home Minister Ramesh Chennithala orders vigilance probe against CEC Gyanesh Kumar over alleged irregularities during his tenure as Southern State's Public Works Department Secretary in 2006. Yet another personal attack on Tamil Nadu Chief Minister Vijay, this time by AIADMK cadres at a protest in Dharapuram. AIADMK cadres chant derogatory slogans against Vijay. Chief Minister Vijay hits out, says spare women from any kind of personal attacks. External Affairs Minister S. Jaishankar has spoken on the shifting global order, calling the US a lonelier power. He flagged growing global competition and China's rise. On Russia, Jaishankar said India's historic ties with Moscow remain unchanged despite the Ukraine conflict and called for an end to the conflict. And we begin this bulletin with big exclusive. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar has hit out at the BJP over the voter dilution row. In an exclusive India Today interview, he alleged misuse of Form 7 and targeting of the voters. D.K. Shivkumar also alleged a big criminal conspiracy and said action must follow against those misusing the process.
4: We are joined with Karnataka Chief Minister, Mr. D.K. Shivkumar. Thank you so much for talking to India Today, sir. Sir, India Today has done an investigation in Bengaluru, especially in Alsuru, sir, where we have found out that in a family of 32 members, 8 voters from the same family have been targeted. And they allege that just because they were Muslims, they have been targeted by one of the local BJP leaders in that particular area, sir. How do you see this particular development?
5: See, you all know that we all are fighting for the right. Our leader, Sri Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, took up this issue in Bangalore. You are telling Karnataka, Bangalore. This is not Bangalore. In the entire country and the entire part of the state, this type of misuse by the BJP workers has been exposed. Why I went to the Election Commission office was, I have made a thorough investigation before all of you have done. My team, my political team, my personal team, and my official team, all have gone and inquired about it. More than lakhs of forms have been printed in Delhi, in different part. Even those who gave this form number 7, they also doesn't know. It has been given to the local assembly segment leaders and the state leaders. These state leaders have given to the assembly segment leaders, and they have asked just to sign and given. Some of them have signed 100, 200, 300, 30, 40 and given. They doesn't know what they are doing. They doesn't know names. Some of them are not in the assembly consciency also. Some of them not. Now already about leader of the opposition and the BJP leaders have admitted that there is nothing fault in it. That means they also have been admitted that these forms have been brought and given to them. So already by knowing that, the election commission has already given an instruction that you have to delete names only after a thorough inquiry. And a series of meeting has been conducted in Delhi also. Though the state election commission tried to convince me and send me, I know what they do. So ultimately we did not yield. As a chief minister of the state, it is my bound duty to protect all every section of the voters. They are not looking only minorities. They are looking at the backward class, scheduled caste, lower oppressed. That is why the election commission also, after in the midnight, which they have received, they said a thorough investigation has to be done to facilitate them that whose names are being deleted can apply for enrollment at any point of time. And they have already said that even all the eligible, including the people are sleepy with, who doesn't have a house also, who has a see, beside the above, booth level camps shall be organized to facilitate submission of application for enrollment, local level outreach, sweep activities, regular press briefings and suitable platforms to ensure that every eligible citizen need awareness of the opportunity to be get. And they have said that even the application for enrollment special camps may also be organized, such as enrollment of people living in night shelters, labor colonies, as well for the homeless and marginalized person. That means all this section. They were targeting all this section because all these sections are the part of, in history, they vote for the Congress party. They are trying to target all this party, poor people.
4: The traditional voters of Congress.
5: Traditional voters of the Congress party, and they are doing it. Now they are going to the DG. They are going to the police officer. Don't take action on their political workers. Let they themselves declare that, yes, we have done, we have given. So let they are poor workers of the BJP, they doesn't know. These are the culprits. They are the culprits. Senior culprits who have been engaged, printed and all. So we will not leave at this stage. There is a procedure. Many FIRs have been filed. And the election commission will have to look into detail. The BROs will have to look into all these things. When they found that already they have collected back thousands of lakhs of applications bank. Some of them are afraid and they have taken back. Now all the BROs, BLOs know about it. So now they should give all those documents and they should file a case legally as per the law of this country.
4: Sir, your protests have a huge impact. One, across the state of Karnataka. Two, across India, where many political parties are coming out and questioning this SIR. And in Karnataka, if you notice that, there are protests in many districts, especially in Vijayapura, Belagavi and other parts, where people who have been declared as a death and a death certificate which was being produced earlier, same people coming out and say that they are alive and they have, there are people who have been misused their names and given death certificates. Sir, how do you see these kind of developments? Do you take credit for this?
5: I don't want to take credit. This is the credit of every voter. Every right to vote is right to live. It is not my credit. It is the Congress party which has been fighting for this, and many of the India Alliance group also should be warned out of it. Already they removed many governments on this. That is what Mr. Mallikarjun Kharge was very clear. After this SIR came, all elections should be, re-election has to be conducted. Now here also they have said that you go back to the earlier voter list.
4: Yeah.
5: Even if SIR has been done, they should also be matched. clear UC line by line pay. But 1 month they have given, 1 month it will not be possible. They have given within how many days they have to go, all these things, it is not possible.
4: But initially you also extended the support to SIR. You said that all cooperation will be done from the government.
5: What we can do? We have to protect our voters, no? So we cooperation means we have given that all documents to every voter for their residential certificate, their caste certificate, whatever we are trying to help them. That is our bound duty as a government. When already they have taken decision, they have taken a shelter from the court, they have taken a shelter from various authorities. They say that they can't be questioned. This is the law of this land is different. Ultimately, there is a people court also, no? We have to fight. That is why, as a chief minister, me, all our colleagues, we came, we studied, we met him, and I think he is convinced. But he is acting at the behest of the other political party leaders. That is what I could see.
4: So tomorrow, BJP is going to meet the election commission. As a government, how are you going to take this forward? Are you going to take legally?
5: No. Why I should take legally? The law will take its own course. We have done wrong. Why they should be afraid? Already twice they met. Let them meet 100 times. We are least bothered. But Forum 7 issue, they have not disclosed one line in this. But they have given a message to all the tashildars that don't delete without seeing the proper verification, documentation. That is what they have given. We will follow to it. I will see that all my caterers will be in the next cabinet. I'll convey it to all my cabinet colleagues also, all my party cadres also, we will colleague and we will see that. But we can't leave this. Action has to be taken against those who are trying to misuse. This is a big criminal conspiracy. This is not an ordinary conspiracy. This is a criminal conspiracy which they have done. This is the nation's biggest scam like this is.
4: Thank you so much.
1: And our news from Telangana, the Congress in Telangana has alleged an attempt to delete the names of one of its party workers and around 30 members of his family from the electoral roll in Hyderabad's Murshidabad and has lodged a complaint with Chief Electoral Officer alleging that pre-printed Form 7 applications were used for this purpose. Now, the complaint, which was dated October 1st, was filed by Pulipati Rajesh Kumar, chairman of the Telangana Pradesh Congress Committee's Election Commission Coordination Committee, and Mohammad Wajid Hussain. It named S. Balachandar, also known as Balu, and described as a BJP booth-level agent or a BLA, in connection with the disputed applications. According to the complaint, Congress BLA Shafuddin and around 30 members of his family were targeted for deletion from the electoral roll. Now, the Congress sought a detailed inquiry into the matter and legal action in if any wrongdoing is established.
6: Ye pure 31 forms hai jo ek hi family ke naam par pure printed forms hai. ये फॉर्म्स को पूरे लगाकर हमने सीईओ साहब को बताया. इसके ऊपर हमने मांग लगाई है कि इमीडिएटली ये सबके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक होना चाहिए. ये फॉर्म कहां से आए, कहां से प्रिंट होकर आए हैं, ये प्रीफिल्ड यानी जो बीजेपी वाले हर बूथ से इतने लोगों को निकालना है, बिल्कुल जो टारगेट करके उन लोगों के पास लिस्ट कहां से आया जिसको निकालना चाह रहे हैं, तो ये सबके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए और इंक्वायरी करके इन सबके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक करने के लिए हमने सीईओ से डिमांड किया.
7: बीजेपी और संघ परिवार के लोग फॉर्म 7 डालकर नामों को डिलीट कराना चाहती है. मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कह रहा हूं, अगर आप गैर जरूरी तौर पर इस तरह से बीजेपी के लोगों को नहीं रोकेंगे कि वो फॉर्म 7 डालेंगे, फॉर्म 7 डालेंगे तो नाम का डिलीट करना नाम को खारिज करने के बराबर है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम कह रहे हैं कि आप इसका नोट लीजिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना से और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर से भी हम बता रहे हैं कि अगर ये होगा तो ठीक नहीं होगा. ईआरओ का काम यह है कि हर फॉर्म 7 को देखे और मालूम करे कि यह कौन दे रहा है दरख्वास्त फॉर्म 7 निकालने की.
1: Now, the submission of the Form 7 for voter deletion is becoming a huge controversy in Telangana, as it seems Congress is claiming that one of its own workers' name and his entire family, about 30 people, their name have been struck off the electoral roll. Now, this is becoming a huge issue there politically as well. Now, moving on to news from Kerala. Kerala Home Minister Ramesh Chennithala has ordered a vigilance investigation into a case relating to allegations of irregularities during current Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's tenure as the state's Public Works Department Secretary. Now, besides allegations of corruption, the wider matter also pertains to the 2006 suicide of Malaysian civil engineer Lee Si Bin, who was associated with the Indo-Malaysian joint venture Patibel. Now, Chennithala claims a note left behind by Bean had mentioned Gyanesh Kumar. The investigation is being initiated following allegations that the original inquiry was deliberately derailed. It was ordered on the basis of a complaint moved by Congress leader. Now, the development continues amid widespread protests by the Congress, other opposition parties and youth-led movement Cockroach Janata Party or the CJP against Kumar over the Special Intensive Revision or the SIR of voter rolls across India. According to the Keralam government, the allegations against Gyanesh Kumar include criminal misconduct in awarding public works to contractors while he was PWD secretary.
8: Yesterday, Mr. Malengir Venugopal, a Congress activist, has given me a petition regarding the malpractices and corrupt activities of Mr. Gyanesh Kumar when he was PWD secretary in Kerala. The presentation reveals some of the major serious issues, and also in between the Malaysian project engineer, Mr. Lee, committed suicide. And in the suicide note, it has been mentioned about Mr. role of Mr. Gyanesh Kumar very clearly. By reading this petition, I am convinced that there is some serious allegations are there. So I had forwarded to the vigilance director to go into the details of the petition and take legal action for giving justice.
9: Yeah, it's a very welcome stage, and I'd like to thank the Kerala government for taking up this issue, because the election commissioner, chief election commissioner, Mr. Gyanesh Kumar's continued behavior and those kind of support which he is giving to those people who are indulging in this kind of corrupt practices also. And this is severe allegations and severe charges against Gyanesh Kumar. And he has the support of Mr. Amit Shah, therefore only he's been doing like this. And it's good that Kerala government has taken note of it and Kerala government has filed cases against it. Gyanesh Kumar should come to the inquiry and face the authorities who are doing that thing. And truth should be always out from the public.
1: And our sports news at the Asian Games, India star boxers Lavlina Borgohain, Praveen Hooda and Ankush Pangal all secured gold medals in their respective categories. Ankush Pangal completing a golden hat-trick for Indian boxing. Now, Lavlina won in 75kg boxing and Praveen claimed gold in 65kg category, ending India's 12-year wait for women's boxing gold at Asiad. With these wins, Lavlina and Praveen joined the legendary MC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asiad gold medals. On the same day, Ankush Pangal won the men's 80kg boxing gold. My colleague Siddharth Vishwanathan has spoken to the star boxers.
10: Okay. Yes. So on Sports Today, it gives us incredible pleasure to welcome Lavlina Borgohain, gold medalist, and belated happy birthday, Lavlina. So Lavlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And आपने मैरी कॉम और परवीन उनके साथ अब एक इलस्ट्रियस लिस्ट में हो एशियन गेम्स के बॉक्सिंग में, तो ये क्या सबसे एक ड्रीम टूर्नामेंट रहा है आपके लिए?
11: हाँ, ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था. सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई, वो भी मेरे बर्थडे के दिन. सबको याद रहेगा, मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा. और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई, तो कहीं ना कहीं माइंड में था. और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था, तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था, तो उसको मुझे करना था इस बार. और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
10: लवलीना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
11: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कॉम्पिटिशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है. और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
10: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड विमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप. यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश, विमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में, तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया.
11: हम बोल सकते हैं कि जैसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है, पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है, लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहा है, और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
10: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आप आगे के सोचते हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
11: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल है, लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ, और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
10: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल, दैट्स इट. एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवलीना बोरगोहेन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स टुडे फॉर ऑल द लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस. थैंक यू. So on Sports Today, we have a very special guest, Parveen Hooda, in the Asian Games, gold medal winner. And boy, oh boy, it was such a proud moment. Parveen, sabse pehle, bahut bahut shukriya humse judne ke liye.
12: Thank you, sir.
10: Parveen, gold medal 2026, bronze medal mila tha aapko 23 mein. Lekin halat hum jante hain, wo kaisa hua tha. Bronze mila tha, lekin whereabouts की फेलियर की वजह से वो मेडल चला गया. उसके बाद आप लंबे समय तक आप रिंग में आए नहीं. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
12: सो जो लास्ट टाइम मैंने ब्रोंज मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी. तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
10: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच या कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
12: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर वन थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
10: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था?
12: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स कि हाँ मैं जीती हूँ ऐसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
10: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
12: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ. और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफी अच्छी टीम है, काफी सपोर्ट मिल रहा है. तो लाइक वो मेडल काफी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए.
10: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार एलए 2028 का टिकट. आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गाँव जाएंगे मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं है तुरंत आप ट्रेनिंग
12: तो
10: करेंगे?
12: नहीं, मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल. बट ये प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना. अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है.
10: बिल्कुल. सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल. मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं. सो कंग्रेचुलेशंस आपको एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए. सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा एक्सक्लूसिवली ऑन स्पोर्ट्स टुडे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.
13: Thank you.
10: So on Sports Today, I am joined by Ankush Pongal, the gold medalist from the Asian Games. Historic gold medal indeed. And it gives me great pleasure to welcome him. And Ankush, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने एशियाई खेल में 8 साल बाद, एक अमित ने जीता था और अब अंकुश ने जीता है, तो कैसा लग रहा है वो मौका जब आप गोल्ड जीते थे, वो पहला ख्याल क्या आया था आपके पास?
14: उस टाइम तो यही ख्याल था कि 10 साल की मेहनत कुछ तो रंग लाई और इसी ओवर के आगे भी करते रहेंगे.
10: अंकुश, क्या संदेशा मिला था जब आप एशियाई खेल में आए थे और क्या संदेशा मिला किसी से, आपके परिवार वालों से या कोच से, जब आप गोल्ड मेडल जीत चुके थे?
14: आने से पहले मतलब यही था कि देश के लिए कुछ करना है और अपना 100% देना है, रिजल्ट की वो निकलनी, अपना 100% देना, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा. और फिर गोल्ड आने के बाद तो फिर रिजल्ट आ ही गया था.
10: ऐसा क्या हुआ था एशियाई खेल में कि यार आप ऐसे जीत रहे थे, ओपोनेंट्स को आप बहुत बढ़िया तरीके से, वो क्या टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा था कि हाँ
15: मैं गोल्ड जीत सकता हूँ, वो क्या एक मैच था, क्या वो पल था?
14: ये था कि उस टाइम तो दिमाग में सिर्फ यही था कि हाँ, जो इतने साल से मेहनत कर रहे थे, पूरी कंटिन्यू फोकस था, वो रंग ला रही है और उसका रिजल्ट मिला भी
15: जी। तो अभी आप जीते हैं गोल्ड, लेकिन आगे आपका क्या प्लान है? मतलब एलए 28 का तो है ही, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, क्वालिफायर भी है, तो कैसा आप प्लान कर रहे हैं ये सब?
14: अभी तो अगले साल पे फोकस है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उससे क्वालिफाई स्टार्ट हो जाएगा, तो यही फोकस रहेगा कि जल्दी से जल्दी क्वालिफाई हो जाए।
15: जी जी, तो पहला जो मतलब जीतने के बाद घर में बात हुई, गांव में बात हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा था सबसे पहले?
14: पहले तो मेरी सिस्टर के पास और मेरे मम्मी पापा के पास फोन मिलाया था, सभी खुश थे। और अभी तो अभी घर वाले आए हैं बाहर।
15: जी, तो अंकुश आखिरी एक सवाल है, गोल्ड मेडल जीते, भारत का जो राष्ट्रगान था वो लहरा उठा था, आपने देखा झंडा ऊंचा लहराते हुए, उस वक्त सबसे पहला क्या ख्याल आया था आपके मन में? इतने सालों का जो आपने जद्दोजहद किया था, इतने सालों का मेहनत, वो ऐसा क्या पल था बचपन में जो आपने सोचा था हाँ मैंने इस पल के लिए मैंने बहुत ये किया था, ये मैंने सोचा था कि ये हुआ है?
14: उस टाइम तो दिमाग में ये आ रहा था कि जो 10 साल से मेहनत कर रहे थे, दिन रात वो करके ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उस टाइम वही दिख रहा था कि हाँ 10 साल से जो भी किया है वेस्ट नहीं गया, वो सब भगवान की दया से सब मिल रहा है।
15: So there we have it, folks. Ankush Pongal, fantastic, fantastic achievement indeed. So bye-bye and thanks for subscribing to Sports Today. Ankush Pongal, gold medalist from the Asian Games.
16: You are watching India Today.
17: Trying to accommodate online classes.
18: A decision that became the starting point of a much bigger story.
19: They've taken out a solidarity march of the 17-year-old who was gang raped about 7 minutes from their college.
18: From the studio to the campus, to the ground, to the voices that needed to be heard.
20: Even if it's the front of the college or the backside of the college, we are just unsafe.
18: We followed the story. We asked the questions.
21: Realist, jo log hai physically assault karte hai bachcho ko.
22: We need the protection.
23: That's your main demand.
18: We stood up for her.
24: The faculty has told these girls, all of them, that they cannot speak to the press.
18: India Today, always standing up for her.

0: सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी
1: जी
0: कांग्रेस के हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने ये विश्वास मुझ में जताया है और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, मेरी चौथी पीढ़ी है ये कांग्रेस में, इस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। 2027 में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ेगा। ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा कि लड़ाई कहाँ पर, कैसे और कितनी होनी है। मैं इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगी कि मैंने पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत होते देखा है। जिस तरह से अभी संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ, और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश में जिस भी कोने में होगा, उसको हम निकाल करके लाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे।
2: देखिए, जो राहुल जी का, प्रियंका जी का निर्णय, जो पार्टी का निर्णय, खड़गे साहब का निर्णय, उसके ऊपर मेरा कोई बोलने का मतलब ही नहीं। जहां वो मुझे लगाए मैं वहां काम करूंगा।

भर्ती बोर्ड और आयोग जब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

0: जान बचाने वाले दौर है और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मिथ को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मिथ, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल हैं और मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफिसाइज कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से ज्यादा जुड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बंद करके भी कि चार्ज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एक राह नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आगे और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मर नहीं सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बल्कि इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर सिर्फ पॉजिटिविटी में जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी कि आपके सामने रो रहा हूँ सर।
0: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
1: तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना न। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ, कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात है।
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
0: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। अब शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
1: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा, हम एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
0: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है, और लोगों ने कहा कि अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, एंड बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे, और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ी गुजराती में बात करी ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता?
1: बोले सर,
0: बेवजह गुजराती बोले छे। अच्छा, तो बाळको मळवा थई गयो? बाळको ने डॉक्टर एलाव कर्या मळवा माटे?
1: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ આ ઉપર તો જોઈ નહીં ડરી ગઈ।
0: અચ્છા અચ્છા,
1: એ થોડી ઈમારતી બહુ ક્લોઝ છે, અને મારા નાના સન બે વર્ષ પછી એને નથી અલાઉડ
0: કરતા। નહીં, હમણાં તો સાથે જ જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે। યસ, હા
1: યસ,
0: કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ અને ફરિયાદ નું નામો નિશાન ને। ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં, બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે। ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાવ, પછી આપણે મળીએ છીએ। ગોડ બ્લેસ યુ। જય જય હિન્દ।
2: And that's a wrap on this special edition. But the story is not over yet, as investigations continue in months to come. What really happened in that cockpit will unfold as well. Why did the Omani co-pilot assault Captain Smith Machar? We will bring every detail as and when they unfold. But for now, it's time for a commercial break. For news updates, stay tuned to India Today.

0: भाई मैं जापान में हूँ और बाथरूमों को इतनी इज्जत दे रखी है इन लोगों ने कि मैं इमोशनली हो जाती हूँ एवरी टाइम आई एंटर एनी वॉशरूम. छोटे से छोटा बाथरूम हो, बड़े से बड़ा बाथरूम हो, प्लीज जस्ट सी.
1: An Indian content creator traveling through Japan was impressed by the thoughtful features in the country's public bathrooms.
2: उसके बाद जितनी भी मम्मियां हैं जो अपने बच्चों के साथ आई हैं बाथरूम करने, उनके लिए एक सीट है कि बच्चा आराम से उस सीट पे बैठे और मम्मी आराम से लैट्रिना लैट्रिना खेले, जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बुरी बात भी है क्योंकि लैट्रिन टाइम इज मी टाइम, बट सो थॉटफुल. अगली चीज देख के आपका दिमाग खराब हो जाए.
1: अंकिता साहिगल हाइलाइटेड फैसिलिटीज डिजाइन टू मेक वॉशरूम्स मोर प्रैक्टिकल एंड कम्फर्टेबल फॉर विमेन, मदर्स एंड चिल्ड्रन बियॉन्ड देयर क्लीनलीनेस.
2: कपड़े चेंज कर सकते हो, मानो नीचे पानी गिरा हुआ है या नीचे गंदा है तो आप इस पे खड़े हो जाओ.
1: A US based woman has shared an emotional glimpse into motherhood at 40, documenting her life with her 4-month-old baby. Among their everyday routines and quiet moments, she also shared one unexpected part of their morning, reciting the Hanuman Chalisa. Aishwarya Rai Bachchan turned heads in an all-black look at Paris Fashion Week. At L'Oréal Paris Express Your Worth show, she also shared a warm moment on stage with Celine Dion against the backdrop of the illuminated Eiffel Tower. Victoria Beckham gave fans a hilarious behind-the-scenes glimpse ahead of her Paris Fashion Week show, casually walking on a treadmill in 4-inch heels. The designer was joined by husband David Beckham, making the workout moment even more entertaining.
3: So are you ready?
1: Paris Fashion Week's experimental spirit was on full display as Maytire Fekil unveiled its Spring-Summer 2027 collection at Place Dalle Republic. The show's unconventional styling and theatrical beauty looks quickly caught the internet's attention. South Korea's Busan Sky Capsule has become a popular attraction among travelers drawn to its colorful private capsules and stunning coastal views. The elevated railway offers small groups a scenic ride above the coastline, making it a favorite among traveler creators.

भर्ती बोर्ड और आयोग जब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

हारने पर जनादेश का अपमान करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस के डीएनए में है। राहुल गांधी जी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अवैध कहा, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है, ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है, ये लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा करना है, ये देश में अराजकता फैलाने का प्रयास है। ये कैसी बात करती है कांग्रेस? कांग्रेस चुनाव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक, और हार जाए तो चुनाव आयोग खराब। आखिर कर्नाटक में कैसे जीते, तेलंगाना में कैसे जीते, हिमाचल में कैसे जीते? उस दौर को याद करें जब केवल प्रधानमंत्री कांग्रेस चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर देते थे कांग्रेस के जमाने में। मैं फिर कहना चाहता हूं, कांग्रेस खतरनाक खेल खेल रही है संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की। हार जाए तो संवैधानिक संस्थाएं गलत है, व्यवस्थाएं गलत है, उसको ध्वस्त कर दो, तहस नहस कर दो, देश को अराजक बना दो, ये पाप है, पाप। लेकिन देश की जनता इस पाप का जवाब वोट से बार बार देती रहेगी। कांग्रेस के नापाक इरादे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।

0: all eyes are on the bipoles in Tamil Nadu on Tuesday. The campaign has turned personal. Star campaigners are in the field before the silent period kicks in. Tensions grip Dharapuram after AIADMK cadres staged dharna outside the Dharapuram police station following the detention of the rural district secretary Selvakumar for alleged cash transport. AIADMK workers and former legislators gathered at the site raising slogans and alleging that the police were acting in favour of the ruling TVK. AIADMK also targeted Vijay and chanted the name of actress Trisha. Meanwhile, a complaint has been filed with the poll panel against Tamil Nadu LOP Udaya Nidhi Stalin for bringing children to his poll rally. A massive war of words has broken out between DMK and TVK following Stalin's shocking body-shaming comment on TVK candidate Satya Bama.
1: Makkalana neengale ipo enna solli koopidringa petti bama innonu irukku balti bama eppadi da andha uruvatha vechittu balti adichaanu theriyala.
0: Chief Minister Vijay slammed the DMK chief, accusing him of mocking a woman. Vijay even lashed out at opposition leaders and asserted that he would not tolerate any ill speak about any woman.
2: Stalin sir vandare enna pesthu ponare nama sagodari Satya Bama avargala adu kaadu kuduthe kekka mudiyadhu enna patti enna venalum pesunga na adha thaangikiren na adha poruthupen aana nama sagodariya pathiyo நம்ம வீட்டில் இருக்க அம்மா அக்கா தங்கைகளை பத்தி நீங்க பேசுனீங்கன்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன்.
0: As the war of words rages on, by-elections in Madurantakam and Dharapuram assembly constituencies will be the first test for the Vijay government after the poll win in May. Bureau report, India Today.
3: A Fly Dubai flight bound for Israel, a sudden blow in the cockpit and a co-pilot allegedly trying to crash the plane. Indian captain Smith Machar fought back, seriously injured and saved the flight. Here is a special report on why Benjamin Netanyahu is calling Captain Machar a hero of Israel.
4: Routine flight, calm skies, then a body blow. Captain Smith Machar, the pilot of Israel-bound Fly Dubai flight FZ1073, has revealed chilling new details of the terrifying moments inside the cockpit. Speaking on a call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Machar, who was grievously injured, said the flight had begun normally. Smith said he was looking toward the front of the cockpit while his Omani co-pilot, Al-Hamami, prayed behind him. And he didn't look at him out of respect. Then, after several minutes, a heavy blow struck the back of his head. His first thought, the aircraft itself had suffered catastrophic damage. But the blows kept coming. That was when Machar realized his co-pilot was attacking him with the crash axe kept in cockpit for emergencies. The assault left his vision blurred, yet he sensed the aircraft plunging sharply. Captain Machar managed to open the door once. However, the radicalized Hamami shut the open door. Fighting through the pain, he mustered one final push to open the cockpit door, allowing passengers to regain control of the aircraft. One man, one door, one final push.
5: I had that one last fight left in me that, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm going to die. And that's when I pushed against everything. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door. And thankfully, people were waiting to pounce back, took over the control and...
4: Netanyahu called the Indian pilot a hero of the entire world for foiling the co-pilot's alleged attempt to crash the flight. Machar is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. The Israeli Prime Minister also invited him alongside Prime Minister Narendra Modi to light a flame on Israeli Independence Day.
6: I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends, I really would like them to bear a celebratory flame. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case, all the citizens of Israel will embrace you. They do now and they will then too. So we hope to see you very soon in Israel.
4: Had it not been for Captain Smith Machar's bravery, West Asia would have plunged into a deeper crisis. Bureau Report, India Today.
3: At the Asian Games, India's star boxers Lavlina Borghain, Parveen Hooda and Ankush Pangal all secured gold medals in their respective categories. Ankush Pangal completing a golden hat-trick for Indian boxing. Lavlina won in 75 kg boxing and Parveen claimed gold in 65 kg category, ending India's 12-year wait for women's boxing gold at Asiad. With these wins, Lavlina and Parveen joined the legendary AMC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asiad gold medals. On the same day, Ankush Pangal won the men's 80 kg boxing gold. My colleague, Siddharth Vishwanathan, has spoken to the star boxers. Listen in.
7: It was an incredible pleasure to welcome Lavlina Borghain, gold medalist, and belated happy birthday, Lavlina. So, Lavlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath ab ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
8: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई वो भी मेरे बर्थडे के दिन सबको याद रहेगा मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई तो कहीं ना कहीं माइंड में था और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था तो उसको मुझे करना था इस बार और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
7: लवलीना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
8: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
7: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड विमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप, यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश विमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में, तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया?
8: हम बोल सकते हैं कि इसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के. लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहा है और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
7: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा. आपने आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
8: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना. कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल है लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
7: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल, दैट्स इट. एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवलीना बोरगोहेन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा, in the Asian Games gold medal winner, and boy oh boy it was such a proud moment. Parveen, sabse pehle bahut bahut shukriya humse judne ke liye.
9: Thank you sir.
7: Parveen, gold medal 2026, bronze medal mila tha aapko 23 mein, lekin halat hum jante hain wo kaisa hua tha. Bronze mila tha lekin whereabouts ki failure ki wajah se wo medal chala gaya. Uske baad aap lambe samay tak aap ring mein aaye nahi. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
9: सो जो लास्ट टाइम मैंने गोल्ड मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी, तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
7: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
9: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
7: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था?
9: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है, हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स की हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
7: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
9: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ. और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफी अच्छी टीम है, काफी सपोर्ट मिल रहा है, तो लाइक वो मेडल काफी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए।
7: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार LA 2028 का टिकट। आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गांव जाएंगे, मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं तुरंत आप ट्रेनिंग
9: तो
7: करेंगे?
9: नहीं, मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल। बट यह प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना। अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है।
7: बिल्कुल, सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल। मैरी कॉम और ये जो भी है लवली ना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस आपको एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए। सो देयर वी हैव इट फोक्स,
3: that's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break now. Keep watching.
10: You are watching India Today.
11: Now we are trying to accommodate online classes.
12: A decision that became the starting point of a much bigger story.
13: They've taken out a solidarity march of the 17-year-old who was gang raped about 7 minutes from their college.
12: From the studio to the campus, to the ground, to the voices that needed to be heard.
14: Even if it's the front of the college or the backside of the college, we are just unsafe.
12: We followed the story. We asked the questions.
15: Delist, jo log hai physically assault karte hai bachcho ko.
16: We need the protection.
17: That's your main demand.
12: We stood up for her.
18: The faculty has told these girls, all of them, that they cannot speak to the press.
12: India Today, always standing up for her.

0: India's 12-year wait for women's boxing gold at Asian. With these wins, Lavlina and Parveen joined the legendary AMC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asian gold medals. On the same day, Ankush Panghal won the men's 80 kg boxing gold. My colleague Siddharth Vishwanathan has spoken to the star boxers. Listen in.
1: It was an incredible pleasure to welcome Lavlina Borgohain, gold medalist, and belated happy birthday, Lavlina. So, Lavlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath aap ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To, ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
2: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था. सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई, वो भी मेरे बर्थडे के दिन. सबको याद रहेगा, मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा. और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई, तो कहीं ना कहीं माइंड में था. और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था, तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था, तो उसको मुझे करना था इस बार. और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
1: लवलीना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
2: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है. तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है. और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है. एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
1: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड वुमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप. यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश, वुमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में. तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया.
2: हम बोल सकते हैं कि जैसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है. हमारे बॉक्सिंग में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है, लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहे हैं और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
1: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आपने आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
2: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल yes. है, लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
1: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल, दैट्स इट. एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवलीना बोरगोहेन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट Parveen Hooda in the Asian Games, gold medal winner. And boy, oh boy, it was such a proud moment. Parveen, sabse pehle, bahut bahut shukriya humse judne ke liye.
3: Thank you, sir.
1: Parveen, gold medal 2026, bronze medal mila tha aapko 23 mein. Lekin halat hum jante hain, wo kaisa hua tha. Bronze mila tha, lekin whereabouts ki failure ki wajah se wo medal chala gaya. Uske baad aap lambe samay tak aap ring mein aaye nahi. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
3: सो जो लास्ट टाइम मैंने गोल्ड मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी. तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
1: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
3: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर वन थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
1: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था?
3: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स कि हाँ मैं जीती हूँ ऐसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
1: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
3: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ. और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफी अच्छी टीम है, काफी सपोर्ट मिल रहा है. तो लाइक वो मेडल काफी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए.
1: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार LA 2028 का टिकट, आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गांव जाएंगे मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं तुरंत आप ट्रेनिंग करेंगे?
3: नहीं, मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल. बट यहाँ प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना. अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है.
1: बिल्कुल. सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल. मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं. सो कंग्रेचुलेशंस आपको एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए. सो देयर वी हैव इट फोक्स.
0: That's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break. Now keep watching.
4: You are watching India Today.

0: All eyes are on the bipolls in Tamil Nadu on Tuesday. The campaign has turned personal. Star campaigners are in the field before the silent period kicks in. Tensions grip Dharapuram after AIADMK cadres staged dharna outside the Dharapuram police station following the detention of their rural district secretary Selvakumar for alleged cash transport. AIADMK workers and former legislators gathered at the site raising slogans and alleging that the police were acting in favour of the ruling TVK. AIADMK also targeted Vijay and chanted the name of actress Trisha. Meanwhile, a complaint has been filed with the poll panel against Tamil Nadu LOP Udaya Nidhi Stalin for bringing children to his poll rally. A massive war of words has broken out between DMK and TVK following Stalin's shocking body-shaming comment on TVK candidate Satya Bama.
1: Makkalana neengale ipo enna solli koopidringa petti bama innonu irukku balti bama eppadi da andha uruvatha vechittu balti adichaanu theriyala.
0: Chief Minister Vijay slammed the DMK chief, accusing him of mocking a woman. Vijay even lashed out at opposition leaders and asserted that he would not tolerate any ill speak about any woman.
2: Stalin sir vandare enna pestu ponare nama sagodari Satyabhama avargala adu kaadu kuduthe kekka mudiyadu enna patti enna venalum pesunga na adha thaangikiren na adha poruthupen aana nama sagodariya pathiyo நம்ம வீட்டில் இருக்க அம்மா அக்கா தங்கைகளை பத்தி நீங்க பேசுனீங்கன்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன்.
0: As the war of words rages on, by-elections in Madurantakam and Dharapuram assembly constituencies will be the first test for the Vijay government after the poll win in May. Bureau report, India Today.
3: A Fly Dubai flight bound for Israel, a sudden blow in the cockpit and a co-pilot allegedly trying to crash the plane. Indian captain Smith Machar fought back, seriously injured and saved the flight. Here is a special report on why Benjamin Netanyahu is calling Captain Machar a hero of Israel.
4: Routine flight, calm skies, then a body blow. Captain Smith Machar, the pilot of Israel-bound Fly Dubai flight FZ1073, has revealed chilling new details of the terrifying moments inside the cockpit. Speaking on a call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Machar, who was grievously injured, said the flight had begun normally. Smith said he was looking toward the front of the cockpit while his Omani co-pilot, Al-Hamami, prayed behind him. And he didn't look at him out of respect. Then, after several minutes, a heavy blow struck the back of his head. His first thought, the aircraft itself had suffered catastrophic damage. But the blows kept coming. That was when Machar realized his co-pilot was attacking him with the crash axe kept in cockpit for emergencies. The assault left his vision blurred, yet he sensed the aircraft plunging sharply. Captain Machar managed to open the door once. However, the radicalized Hamami shut the open door. Fighting through the pain, he mustered one final push to open the cockpit door, allowing passengers to regain control of the aircraft. One man, one door, one final push.
5: I had that one last fight left in me that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm going to die. And that's when I pushed against everything. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door. And thankfully, people were waiting to pounce back, took over the control and...
4: Netanyahu called the Indian pilot a hero of the entire world for foiling the co-pilot's alleged attempt to crash the flight. Machar is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. The Israeli Prime Minister also invited him alongside Prime Minister Narendra Modi to light a flame on Israeli Independence Day.
6: I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends, I really would like them to bear a celebratory flame. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case, all the citizens of Israel will embrace you. They do now and they will then too. So we hope to see you very soon in Israel.
4: Had it not been for Captain Smith Machar's bravery, West Asia would have plunged into a deeper crisis. Bureau Report, India Today.
3: At the Asian Games, India's star boxers Lavlina Borghain, Parveen Hooda and Ankush Pangal all secured gold medals in their respective categories. Ankush Pangal completing a golden hat-trick for Indian boxing. Lavlina won in 75 kg boxing and Parveen claimed gold in 65 kg category, ending India's 12-year wait for women's boxing gold at Asiad. With these wins, Lavlina and Parveen joined the legendary AMC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asiad gold medals. On the same day, Ankush Pangal won the men's 80 kg boxing gold. My colleague, Siddharth Vishwanathan, has spoken to the star boxers. Listen in.
7: It was an incredible pleasure to welcome Lavlina Borghain, gold medalist, and belated happy birthday, Lavlina. So, Lavlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath ab ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
8: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई वो भी मेरे बर्थडे के दिन सबको याद रहेगा मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई तो कहीं ना कहीं माइंड में था और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था तो उसको मुझे करना था इस बार और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
7: लवलीना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
8: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
7: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड विमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप, यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश विमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में, तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया?
8: हम बोल सकते हैं कि इसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के. लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहा है और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
7: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा. आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
8: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी. उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल है लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
7: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल, दैट्स इट. एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवलीना बोरगोहेन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा, in the Asian Games gold medal winner, and boy oh boy it was such a proud moment. Parveen, sabse pehle bahut bahut shukriya humse judne ke liye.
9: Thank you sir.
7: Parveen, gold medal 2026, bronze medal mila tha aapko 23 mein, lekin halaat hum jante hain wo kaisa hua tha. Bronze mila tha lekin whereabouts ki failure ki wajah se wo medal chala gaya. Uske baad aap lambe samay tak aap ring mein aaye nahi. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
9: सो जो लास्ट टाइम मैंने गोल्ड मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी. तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
7: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
9: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
7: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था?
9: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है, हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स की हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
7: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
9: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ. और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफी अच्छी टीम है, काफी सपोर्ट मिल रहा है, तो लाइक वो मेडल काफी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए।
7: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार LA 2028 का टिकट। आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गांव जाएंगे मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं तुरंत आप ट्रेनिंग करेंगे?
9: नहीं, मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल। बट यह प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना। अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके के हिसाब से ट्रेनिंग करनी है।
7: बिल्कुल, सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल। मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस आपको एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए। सो देयर वी हैव इट फोक्स,
3: that's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break now. Keep watching.
10: You are watching India Today.
11: How many of us have witnessed a man flashing us?
12: All of us. It's
11: how many of us have witnessed a man making obscene gestures at us?
12: All of us.
11: How many of us here have been felt up in a public space?
12: All of us.
11: How many of us have borderline been sexually assaulted? That's 100% count. How many of us usually never speak about it?

0: और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई, तो कहीं ना कहीं माइंड में था. और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था, तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था, तो उसको मुझे करना था इस बार. और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
1: लवली ना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
0: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है. और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
1: लवली ना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड विमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप, यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश विमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में, तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया.
0: हम बोल सकते हैं कि जैसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है, लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहा है, और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
1: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
0: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल है, लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ, और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
1: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल, दैट्स इट. एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवलीना बोरगोहेन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा, in the Asian Games gold medal winner, and boy oh boy it was such a proud moment. Parveen, sabse pehle bahut bahut shukriya humse judne ke liye.
2: Thank you sir.
1: Parveen, gold medal 2026, bronze medal mila tha aapko 23 mein, lekin halaat hum jante hain wo kaisa hua tha. Bronze mila tha lekin whereabouts ki failure ki wajah se wo medal chala gaya, uske baad aap lambe samay tak aap ring mein aaye nahi. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
2: सो जो लास्ट टाइम मैंने ब्रोंज मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी, तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
1: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
2: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर वन थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती, तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
1: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था.
2: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है, हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स की, हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
1: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
2: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ, और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, तो लाइक वो मेडल काफ़ी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए.
1: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार LA 2028 का टिकट, आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गाँव जाएंगे मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं तुरंत आप ट्रेनिंग
2: तो
1: करेंगे?
2: नहीं, मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए, और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल. बट यह प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना, अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है, और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है.
1: बिल्कुल, सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल. मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस आपको, एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए. सो देयर वी हैव इट फोक्स.
3: That's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break. Now keep watching.
4: You are watching India Today.

0: All eyes are on the bipoles in Tamil Nadu on Tuesday. The campaign has turned personal. Star campaigners are in the field before the silent period kicks in. Tensions grip Dharapuram after AIADMK cadres staged dharna outside the Dharapuram police station following the detention of their rural district secretary Selvakumar for alleged cash transport. AIADMK workers and former legislators gathered at the site raising slogans and alleging that the police were acting in favour of the ruling TVK. AIADMK also targeted Vijay and chanted the name of actress Trisha. Meanwhile, a complaint has been filed with the poll panel against Tamil Nadu LOP Udyanidhi Stalin for bringing children to his poll rally. A massive war of words has broken out between DMK and TVK following Stalin's shocking body-shaming comment on TVK candidate Satya Bama.
1: Makkalana, neengale, ippo enna solli koopidringa? Petti Bama. Innonu irukku, Balti Bama. Eppadithaan andha uruvatha vechittu balti adichaanu theriyala.
0: Chief Minister Vijay slammed the DMK chief, accusing him of mocking a woman. Vijay even lashed out at opposition leaders and asserted that he would not tolerate any ill speak about any woman.
2: Stalin sir vandaru enna pestu ponaru nama sagodari Satya Bama avargala adu kaadu kuduthe kekka mudiyadhu enna patti enna venalum pesunga na adha thaangikiren na adha poruthupen aana nama sagodariya pathiyo நம்ம வீட்டில் இருக்க அம்மா அக்கா தங்கைகளை பத்தி நீங்க பேசுனீங்கன்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன்.
0: As the war of words rages on, by-elections in Madurantakam and Dharapuram assembly constituencies will be the first test for the Vijay government after the poll win in May. Bureau Report, India Today.
3: A Fly Dubai flight bound for Israel, a sudden blow in the cockpit and a co-pilot allegedly trying to crash the plane. Indian captain Smith Machar fought back, seriously injured and saved the flight. Here is a special report on why Benjamin Netanyahu is calling Captain Machar a hero of Israel.
4: Routine flight, calm skies, then a body blow. Captain Smith Machar, the pilot of Israel-bound Fly Dubai flight FZ1073, has revealed chilling new details of the terrifying moments inside the cockpit. Speaking on a call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Machar, who was grievously injured, said the flight had begun normally. Smith said he was looking toward the front of the cockpit while his Omani co-pilot, Al-Hamami, prayed behind him. And he didn't look at him out of respect. Then, after several minutes, a heavy blow struck the back of his head. His first thought, the aircraft itself had suffered catastrophic damage. But the blows kept coming. That was when Machar realized his co-pilot was attacking him with the crash axe kept in cockpit for emergencies. The assault left his vision blurred, yet he sensed the aircraft plunging sharply. Captain Machar managed to open the door once. However, the radicalized Hamami shut the open door. Fighting through the pain, he mustered one final push to open the cockpit door, allowing passengers to regain control of the aircraft. One man, one door, one final push.
5: I had that one last fight left in me that, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door. And thankfully, people were waiting to pounce back, took over the control and...
4: Netanyahu called the Indian pilot a hero of the entire world for foiling the co-pilot's alleged attempt to crash the flight. Machar is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. The Israeli Prime Minister also invited him alongside Prime Minister Narendra Modi to light a flame on Israeli Independence Day.
6: I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends, I really would like them to bear a celebratory flame. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case, all the citizens of Israel will embrace you. They do now and they will then too. So we hope to see you very soon in Israel.
4: Had it not been for Captain Smith Machar's bravery, West Asia would have plunged into a deeper crisis. Bureau Report, India Today.
3: At the Asian Games, India's star boxers Lavlina Borghain, Parveen Hooda and Ankush Pangal all secured gold medals in their respective categories. Ankush Pangal completing a golden hat-trick for Indian boxing. Lavlina won in 75 kg boxing and Parveen claimed gold in 65 kg category, ending India's 12-year wait for women's boxing gold at Asian. With these wins, Lavlina and Parveen joined the legendary MC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asian gold medals. On the same day, Ankush Pangal won the men's 80 kg boxing gold. My colleague Siddharth Vishwanathan has spoken to the star boxers. Listen in.
7: It was an incredible pleasure to welcome Lavlina Borghain, gold medalist, and belated happy birthday, Lavlina. So, Lavlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath aap ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To, ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
8: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई वो भी मेरे बर्थडे के दिन सबको याद रहेगा मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई तो कहीं ना कहीं माइंड में था और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था तो उसको मुझे करना था इस बार और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
7: Lavlina, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम ट्रेनिंग डाइट क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो
8: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है इतना मेरा 15 साल हो गया अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ सेम ही डिसिप्लिन सुबह उठना है जाना है बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है तो वो भी काम करता है एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ ये लंबा प्रोसेस है तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हाँ हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
7: Lavlina, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं वर्ल्ड वुमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश वुमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया.
8: हम बोल सकते हैं कि जैसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के. लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है. हमारे बॉक्सिंग में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहे हैं और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
7: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आपने आप आगे के सोचते हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
8: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना. कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ.
7: yes.
8: गोल है लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
7: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल दैट्स इट. एम इज LA 2028. सेम उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवलीना बोरगोहेन. लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा in the Asian Games gold medal winner, and boy oh boy it was such a proud moment. Parveen, sabse pehle bahut bahut shukriya humse judne ke liye.
9: Thank you sir.
7: Parveen, gold medal 2026, bronze medal mila tha aapko 23 mein, lekin halat hum jante hain wo kaisa hua tha. Bronze mila tha lekin whereabouts ki failure ki wajah se wo medal chala gaya. Uske baad aap lambe samay tak aap ring mein aaye nahi. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
9: सो जो लास्ट टाइम मैंने ब्रोंज मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी. तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
7: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
9: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
7: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था?
9: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स कि हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
7: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
9: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ. और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफी अच्छी टीम है, काफी सपोर्ट मिल रहा है, तो वो मेडल काफी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए।
7: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार LA 2028 का टिकट। आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गांव जाएंगे, मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं है तुरंत आप ट्रेनिंग करेंगे?
9: नहीं, मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल। बट ये प्लान तो हमने पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना, अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे क्वालिफाई करना है और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है।
7: बिल्कुल, सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल। मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस आपको एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए। सो देयर वी हैव इट फोक्स।
3: That's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break. Now keep watching.
10: You are watching India Today.
11: Now we are trying to accommodate online classes.
12: A decision that became the starting point of a much bigger story.
13: They've taken out a solidarity march of the 17-year-old who was gang raped about 7 minutes from their college.
12: From the studio to the campus, to the ground, to the voices that needed to be heard.
14: Even if it's the front of the college or the back side of the college, we are just unsafe.
12: We followed the story. We asked the questions.
15: D-list, jo log hai, physically assault karte hai bachcho ko.
16: We need the protection.
17: That's your main demand.
12: We stood up for her.
18: The faculty has told these girls, all of them, that they cannot speak to the press.
12: India Today, always standing up for her.

0: हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हो, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है। एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है। तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है, और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं।
1: लवली ना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड विमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप, यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश, विमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में, तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया।
0: हाँ, बोल सकते हैं कि जैसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है, पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, और उसी वजह से निकल के आ रहा है, जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है। इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है, हाँ गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था, तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहे हैं, और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा। हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, BFI है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं।
1: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आपने आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
0: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ, ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है। 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, गोल है, लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ, बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ, और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस।
1: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल दैट्स इट, एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस लवलीना बोरगोहेन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन। हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा in the Asian Games, gold medal winner, and boy oh boy, it was such a proud moment. Parveen, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
2: Thank you, sir.
1: Parveen, gold medal 2026, bronze medal मिला था आपको 23 में, लेकिन हालात हम जानते हैं वो कैसा हुआ था, bronze मिला था लेकिन whereabouts की failure की वजह से वो medal चला गया, उसके बाद आप लंबे समय तक आप ring में आए नहीं। जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
2: सो जो लास्ट टाइम मैंने ब्रोंज मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था, और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी, एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता, और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था, तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी, तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे।
1: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
2: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उनके साथ ही था, और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती, तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी।
1: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था.
2: नहीं मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स की, हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके, बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
1: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
2: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ, और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, तो लाइक वो मेडल काफ़ी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए.
1: तो परवीन अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार एलए 2028 का टिकट, आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गाँव जाएंगे मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं तुरंत आप ट्रेनिंग करेंगे?
2: नहीं मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए, और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल, बट यहाँ प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना, अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है, और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है.
1: बिल्कुल, सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल. मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना उनके लिस्ट में आप आ गए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस आपको, एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए. सो देयर वी हैव इट फोक्स.
3: That's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break. Now keep watching.
4: You are watching India Today.

0: all eyes are on the bipoles in Tamil Nadu on Tuesday. The campaign has turned personal. Star campaigners are in the field before the silent period kicks in. Tensions grip Dharapuram after AIADMK cadres staged dharna outside the Dharapuram police station following the detention of the rural district secretary Selvakumar for alleged cash transport. AIADMK workers and former legislators gathered at the site raising slogans and alleging that the police were acting in favour of the ruling TVK. AIADMK also targeted Vijay and chanted the name of actress Trisha. Meanwhile, a complaint has been filed with the poll panel against Tamil Nadu LOP Udaya Nidhi Stalin for bringing children to his poll rally. A massive war of words has broken out between DMK and TVK following Stalin's shocking body-shaming comment on TVK candidate Satya Bama.
1: Makkalana neengale ipo enna solli koopidringa petti bama innonu irukku balti bama eppadi da andha uruvatha vechittu balti adichaanu theriyala.
0: Chief Minister Vijay slammed the DMK chief, accusing him of mocking a woman. Vijay even lashed out at opposition leaders and asserted that he would not tolerate any ill speak about any woman.
2: Stalin sir vandare enna pestu ponare nama sagodari Satya Bama avargala adu kaadu kuduthe kekka mudiyadhu enna patti enna venalum pesunga na adha thaangikiren na adha poruthupen aana nama sagodariya pathiyo நம்ம வீட்டில் இருக்க அம்மா அக்கா தங்கைகளை பத்தி நீங்க பேசுனீங்கன்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன்.
0: As the war of words rages on, by-elections in Madurantakam and Dharapuram assembly constituencies will be the first test for the Vijay government after the poll win in May. Bureau report, India Today.
3: A Fly Dubai flight bound for Israel, a sudden blow in the cockpit, and a co-pilot allegedly trying to crash the plane. Indian captain Smith Machar fought back, seriously injured, and saved the flight. Here is a special report on why Benjamin Netanyahu is calling Captain Machar a hero of Israel.
4: Routine flight, calm skies. Then, a body blow. Captain Smith Machar, the pilot of Israel-bound Fly Dubai flight FZ1073, has revealed chilling new details of the terrifying moments inside the cockpit. Speaking on a call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Machar, who was grievously injured, said the flight had begun normally. Smith said he was looking toward the front of the cockpit while his Omani co-pilot, Al-Hamami, prayed behind him. And he didn't look at him out of respect. Then, after several minutes, a heavy blow struck the back of his head. His first thought, the aircraft itself had suffered catastrophic damage. But the blows kept coming. That was when Machar realized his co-pilot was attacking him with the crash axe kept in cockpit for emergencies. The assault left his vision blurred, yet he sensed the aircraft plunging sharply. Captain Machar managed to open the door once. However, the radicalized Hamami shut the open door. Fighting through the pain, he mustered one final push to open the cockpit door, allowing passengers to regain control of the aircraft. One man, one door, one final push.
5: I had that one last fight left in me that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door. And thankfully, people were waiting to pounce back, took over the control and...
4: Netanyahu called the Indian pilot a hero of the entire world for foiling the co-pilot's alleged attempt to crash the flight. Machar is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. The Israeli Prime Minister also invited him alongside Prime Minister Narendra Modi to light a flame on Israeli Independence Day.
6: I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends, I really would like them to bear a celebratory flame. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case, all the citizens of Israel will embrace you. They do now and they will then too. So we hope to see you very soon in Israel.
4: Had it not been for Captain Smith Machar's bravery, West Asia would have plunged into a deeper crisis. Bureau Report, India Today.
3: At the Asian Games, India's star boxers Lavlina Borghain, Parveen Hooda and Ankush Pangal all secured gold medals in their respective categories. Ankush Pangal completing a golden hat-trick for Indian boxing. Lavlina won in 75 kg boxing and Parveen claimed gold in 65 kg category, ending India's 12-year wait for women's boxing gold at Asiad. With these wins, Lavlina and Parveen joined the legendary AMC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asiad gold medals. On the same day, Ankush Pangal won the men's 80 kg boxing gold. My colleague, Siddharth Vishwanathan, has spoken to the star boxers. Listen in.
7: It was an incredible pleasure to welcome Lavlina Borghain, gold medalist, and belated happy birthday, Lavlina. So, Lavlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath ab ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
8: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई वो भी मेरे बर्थडे के दिन सबको याद रहेगा मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई तो कहीं ना कहीं माइंड में था और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था तो उसको मुझे करना था इस बार और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
7: लवलीना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
8: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
7: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड विमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप. यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश, विमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में. तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया?
8: हम बोल सकते हैं कि इसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के. लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहा है और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
7: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा. आप आगे के सोचते हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
8: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी. उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल है, लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
7: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल, दैट्स इट. एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवलीना बोरगोहेन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा, in the Asian Games gold medal winner, and boy oh boy it was such a proud moment. Parveen, sabse pehle bahut bahut shukriya humse judne ke liye.
9: Thank you sir.
7: Parveen, gold medal 2026, bronze medal mila tha aapko 23 mein, lekin halat hum jante hain wo kaisa hua tha. Bronze mila tha lekin whereabouts ki failure ki wajah se wo medal chala gaya. Uske baad aap lambe samay tak aap ring mein aaye nahi. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
9: सो जो लास्ट टाइम मैंने गोल्ड मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी. तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
7: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिलाया कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
9: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
7: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था?
9: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है, हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स की हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
7: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
9: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ, और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफी अच्छी टीम है, काफी सपोर्ट मिल रहा है, तो लाइक वो मेडल काफी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए।
7: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार एलए 2028 का टिकट। आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गांव जाएंगे मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं है तुरंत आप ट्रेनिंग
9: तो
7: करेंगे?
9: नहीं मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए, और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल। बट यह प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना, अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है, और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है।
7: बिल्कुल, सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल। मैरी कॉम और ये जो भी है लवली ना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस आपको एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए। सो देयर वी हैव इट फोक्स,
3: that's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break now. Keep watching.
10: You are watching India Today.

0: One man, one door, one final push.
1: I had that one last fight left in me that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door. And thankfully, people were waiting to pounce back, took over the control and...
0: Netanyahu called the Indian pilot a hero of the entire world for foiling the co-pilot's alleged attempt to crash the flight. Machar is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. The Israeli Prime Minister also invited him alongside Prime Minister Narendra Modi to light a flame on Israeli Independence Day.
2: I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends, I really would like them to bear a celebratory flame. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case, all the citizens of Israel will embrace you. They do now and they will then too. So we hope to see you very soon in Israel.
0: Had it not been for Captain Smith Machar's bravery, West Asia would have plunged into a deeper crisis. Bureau Report, India Today.
3: At the Asian Games, India's star boxers Lavlina Borghain, Parveen Hooda and Ankush Pangal all secured gold medals in their respective categories. Ankush Pangal completing a golden hat-trick for Indian boxing. Lavlina won in 75 kg boxing and Parveen claims gold in 65 kg category, ending India's 12-year wait for women's boxing gold at Asian. With these wins, Lavlina and Parveen joined the legendary MC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asian gold medals. On the same day, Ankush Pangal won the men's 80 kg boxing gold. My colleague Siddharth Vishwanathan has spoken to the star boxers. Listen in.
4: Gives us incredible pleasure to welcome Lavlina Borghain, gold medalist, and belated happy birthday, Lavlina. So, Lavlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath ab ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To, ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
5: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई वो भी मेरे बर्थडे के दिन सबको याद रहेगा मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई तो कहीं ना कहीं माइंड में था और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था तो उसको मुझे करना था इस बार और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
4: लवलीना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
5: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
4: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड वुमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप, यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश वुमेन पावर डोमिनेट कर

0: रहा है हर स्पोर्ट में, तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया?
1: हम बोल सकते हैं कि जैसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के. लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है. हमारे बॉक्सिंग में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहे हैं, और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, BFI है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
0: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28, आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आपने आप आगे के सोचते हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
1: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी. उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल है, लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ, और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
0: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल दैट्स इट, एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवलीना बोरगोइन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा इन द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर, एंड बॉय ओ बॉय इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट. परवीन सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए.
2: थैंक यू सर.
0: परवीन, गोल्ड मेडल 2026, ब्रॉन्ज मेडल मिला था आपको 23 में, लेकिन हालात हम जानते हैं वो कैसा हुआ था. ब्रॉन्ज मिला था लेकिन वेयर अबाउट्स की फेलियर की वजह से वो मेडल चला गया. उसके बाद आप लंबे समय तक आप रिंग में आए नहीं. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
2: सो जो लास्ट टाइम मैंने ब्रोल मेडल जीता था, वो काफ़ी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था, और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊँगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता, और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी. तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
0: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
2: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
0: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था.
2: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था. और हमें लाइक पता चल ही जाता है, हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी. वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स की, हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
0: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूं, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूं, कैसा था ये?
2: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ. और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है. तो लाइक वो मेडल काफ़ी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए.
0: तो परवीन अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार LA 2028 का टिकट. आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गांव जाएंगे मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं तुरंत आप ट्रेनिंग
2: तो
0: करेंगे?
2: नहीं मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए. और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल. बट यह प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना. अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है. और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे, तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है.
0: बिल्कुल. सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक हिस्टोरिक गोल्ड मेडल. मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं. सो कंग्रेचुलेशंस आपको एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए. सो देयर वी हैव इट फोक्स.
3: That's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break. Now keep watching.
4: You are watching India Today.

0: all eyes are on the bipoles in Tamil Nadu on Tuesday. The campaign has turned personal. Star campaigners are in the field before the silent period kicks in. Tensions grip Dharapuram after AIADMK cadres staged dharna outside the Dharapuram police station following the detention of their rural district secretary Selvakumar for alleged cash transport. AIADMK workers and former legislators gathered at the site raising slogans and alleging that the police were acting in favour of the ruling TVK. AIADMK also targeted Vijay and chanted the name of actress Trisha. Meanwhile, a complaint has been filed with the poll panel against Tamil Nadu LOP Udaya Nidhi Stalin for bringing children to his poll rally. A massive war of words has broken out between DMK and TVK following Stalin's shocking body-shaming comment on TVK candidate Satya Bama.
1: Makkalana neengale ipo enna solli koopidringa petti bama innonu irukku balti bama eppadi da andha uruvatha vechittu balti adichaanu theriyala.
0: Chief Minister Vijay slammed the DMK chief, accusing him of mocking a woman. Vijay even lashed out at opposition leaders and asserted that he would not tolerate any ill speak about any woman.
2: Stalin sir vandare enna pestu ponare nama sagodari Satyabama avargala adu kaadu kuduthe kekka mudiyadu enna patti enna venalum pesunga na adha thaangikiren na adha poruthupen aana nama sagodariya pathiyo நம்ம வீட்டில் இருக்க அம்மா அக்கா தங்கைகளை பத்தி நீங்க பேசுனீங்கன்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன்.
0: As the war of words rages on, by-elections in Madurantakam and Dharapuram assembly constituencies will be the first test for the Vijay government after the poll win in May. Bureau report, India Today.
3: A Fly Dubai flight bound for Israel, a sudden blow in the cockpit and a co-pilot allegedly trying to crash the plane. Indian captain Smith Machar fought back, seriously injured and saved the flight. Here is a special report on why Benjamin Netanyahu is calling Captain Machar a hero of Israel.
4: Routine flight, calm skies, then a body blow. Captain Smith Machar, the pilot of Israel-bound Fly Dubai flight FZ1073, has revealed chilling new details of the terrifying moments inside the cockpit. Speaking on a call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Machar, who was grievously injured, said the flight had begun normally. Smith said he was looking toward the front of the cockpit while his Omani co-pilot, Al-Hamami, prayed behind him. And he didn't look at him out of respect. Then, after several minutes, a heavy blow struck the back of his head. His first thought, the aircraft itself had suffered catastrophic damage. But the blows kept coming. That was when Machar realized his co-pilot was attacking him with the crash axe kept in cockpit for emergencies. The assault left his vision blurred, yet he sensed the aircraft plunging sharply. Captain Machar managed to open the door once. However, the radicalized Hamami shut the open door. Fighting through the pain, he mustered one final push to open the cockpit door, allowing passengers to regain control of the aircraft. One man, one door, one final push.
5: I had that one last fight left in me that, you know, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm going to die. And that's when I pushed against everything. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door. And thankfully, people were waiting to pounce back, took over the control and...
4: Netanyahu called the Indian pilot a hero of the entire world for foiling the co-pilot's alleged attempt to crash the flight. Machar is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. The Israeli Prime Minister also invited him alongside Prime Minister Narendra Modi to light a flame on Israeli Independence Day.
6: I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends, I really would like them to bear a celebratory flame. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case, all the citizens of Israel will embrace you. They do now and they will then too. So we hope to see you very soon in Israel.
4: Had it not been for Captain Smith Machar's bravery, West Asia would have plunged into a deeper crisis. Bureau Report, India Today.
3: At the Asian Games, India's star boxers Lavlina Borghain, Parveen Hooda and Ankush Pangal all secured gold medals in their respective categories. Ankush Pangal completing a golden hat-trick for Indian boxing. Lavlina won in 75 kg boxing and Parveen claimed gold in 65 kg category, ending India's 12-year wait for women's boxing gold at Asiad. With these wins, Lavlina and Parveen joined the legendary AMC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asiad gold medals. On the same day, Ankush Pangal won the men's 80 kg boxing gold. My colleague, Siddharth Vishwanathan, has spoken to the star boxers. Listen in.
7: It was an incredible pleasure to welcome Lavlina Borghain, gold medalist, and belated happy birthday, Lavlina. So, Lavlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath ab ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
8: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई वो भी मेरे बर्थडे के दिन सबको याद रहेगा मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई तो कहीं ना कहीं माइंड में था और ऐसे कॉमनवेल गेम्स में भी मेरा सिल्वर था तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था तो उसको मुझे करना था इस बार और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
7: लवलीना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
8: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
7: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड विमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप. यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश, विमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में. तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया?
8: हम बोल सकते हैं कि इसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के. लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहा है और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
7: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा. आपने आप आगे के सोचते हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
8: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना. कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल है लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
7: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल, दैट्स इट. एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवलीना बोरगोहेन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा, in the Asian Games gold medal winner, and boy oh boy it was such a proud moment. Parveen, sabse pehle bahut bahut shukriya humse judne ke liye.
9: Thank you sir.
7: Parveen, gold medal 2026, bronze medal mila tha aapko 23 mein, lekin halaat hum jante hain wo kaisa hua tha. Bronze mila tha lekin whereabouts ki failure ki wajah se wo medal chala gaya. Uske baad aap lambe samay tak aap ring mein aaye nahi. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
9: सो जो लास्ट टाइम मैंने गोल्ड मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी, तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
7: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच या कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
9: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
7: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था?
9: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है, हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स की हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
7: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
9: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ. और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफी अच्छी टीम है, काफी सपोर्ट मिल रहा है, तो लाइक वो मेडल काफी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए।
7: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार LA 2028 का टिकट। आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गांव जाएंगे मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं तुरंत आप ट्रेनिंग करेंगे?
9: नहीं, मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल। बट यह प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना। अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है।
7: बिल्कुल, सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल। मैरी कॉम और ये जो भी है लवली ना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस आपको एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए। सो देयर वी हैव इट फोक्स,
3: that's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break now. Keep watching.
10: You are watching India Today.
11: How many of us have witnessed a man flashing us?
12: All of us. It's
11: how many of us have witnessed a man making obscene gestures at us?
12: All of us.
11: How many of us here have been felt up in a public space?
12: All of us.
11: How many of us have borderline been sexually assaulted? That's 100% count. How many of us usually never speak about it?

भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

0: Him alongside Prime Minister Narendra Modi to light a flame on Israeli Independence Day.
1: I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends, I really would like them to bear a celebratory flame. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case, all the citizens of Israel will embrace you. They do now and they will then too. So we hope to see you very soon in Israel.
0: Had it not been for Captain Smit Machar's bravery, West Asia would have plunged into a deeper crisis. Bureau Report, India Today. At the Asian Games, India's star boxers, Lovlina Borghain, Parveen Hooda and Ankush Pangal all secured gold medals in their respective categories. Ankush Pangal completing a golden hat-trick for Indian boxing. Lovlina won in 75 kg boxing and Parveen claimed gold in 65 kg category, ending India's 12-year wait for women's boxing gold at Asian. With these wins, Lovlina and Parveen joined the legendary MC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asian gold medals. On the same day, Ankush Pangal won the men's 80 kg boxing gold. My colleague Siddharth Vishwanathan has spoken to the star boxers. Listen in.
2: It was an incredible pleasure to welcome Lovlina Borghain, gold medalist, and belated happy birthday, Lovlina. So, Lovlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath ab ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
3: ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था. सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई, वो भी मेरे बर्थडे के दिन. सबको याद रहेगा, मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा. और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई, तो कहीं ना कहीं माइंड में था. और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था, तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था, तो उसको मुझे करना था इस बार. और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
2: लवली ना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
3: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हो, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है. तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है. और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
2: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड वुमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ में हमने देखा इट वाज अ गोल्डन स्वीप. यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश, वुमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में. तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया?
3: हाँ, बोल सकते हैं कि ऐसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के, लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है, लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहे हैं और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले

0: टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, BFI है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
1: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28, आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा, आप आगे के सोच रहे हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
0: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी. उसके बाद फिर से कमबैक करना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल है, लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
1: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल दैट्स इट, एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवली ना बोरगोइन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा इन द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर, एंड बॉय ओ बॉय इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट. परवीन, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए.
2: थैंक यू सर.
1: परवीन, गोल्ड मेडल 2026, ब्रॉन्ज मेडल मिला था आपको 23 में, लेकिन हालात हम जानते हैं वो कैसा हुआ था. ब्रॉन्ज मिला था लेकिन वेयर अबाउट्स की फेलियर की वजह से वो मेडल चला गया. उसके बाद आप लंबे समय तक आप रिंग में आए नहीं. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
2: सो यो लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था, और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता, और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी. तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
1: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच या कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
2: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर वन थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
1: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था.
2: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था. और हमें लाइक पता चल ही जाता है, हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स की, हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
1: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूं, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूं, कैसा था ये?
2: उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ, जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ. और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है. तो वो मेडल काफ़ी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए.
1: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, और आखिरकार LA 2028 का टिकट, आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गांव जाएंगे, मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं तुरंत आप ट्रेनिंग करेंगे?
2: नहीं, मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए, और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल। बट ये प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना। अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर, तो वहां पे लाइक क्वालिफाई करना है, और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे, तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है।
1: बिल्कुल, सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल। मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस आपको, एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए। सो देयर वी हैव इट फोक्स।
3: That's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break. Now keep watching.
4: You are watching India Today.

0: all eyes are on the bipoles in Tamil Nadu on Tuesday. The campaign has turned personal. Star campaigners are in the field before the silent period kicks in. Tensions grip Dharapuram after AIADMK cadres staged dharna outside the Dharapuram police station following the detention of their rural district secretary Selvakumar for alleged cash transport. AIADMK workers and former legislators gathered at the site raising slogans and alleging that the police were acting in favour of the ruling TVK. AIADMK also targeted Vijay and chanted the name of actress Trisha. Meanwhile, a complaint has been filed with the poll panel against Tamil Nadu LOP Udaya Nidhi Stalin for bringing children to his poll rally. A massive war of words has broken out between DMK and TVK following Stalin's shocking body-shaming comment on TVK candidate Satya Bama.
1: Makkalana neengale ipo enna solli koopidringa petti bama innonu irukku balti bama eppadi da andha uruvatha vechittu balti adichaanu theriyala.
0: Chief Minister Vijay slammed the DMK chief, accusing him of mocking a woman. Vijay even lashed out at opposition leaders and asserted that he would not tolerate any ill speak about any woman.
2: Stalin sir vandare enna pestu ponare nama sagodari Satyabama avargala adu kaadu kuduthe kekka mudiyadu enna patti enna venalum pesunga na adha thaangikiren na adha poruthupen aana nama sagodariya pathiyo நம்ம வீட்டில் இருக்க அம்மா அக்கா தங்கைகளை பத்தி நீங்க பேசுனீங்கன்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன்.
0: As the war of words rages on, by-elections in Madurantakam and Dharapuram assembly constituencies will be the first test for the Vijay government after the poll win in May. Bureau report, India Today.
3: A Fly Dubai flight bound for Israel, a sudden blow in the cockpit and a co-pilot allegedly trying to crash the plane. Indian captain Smith Machar fought back, seriously injured and saved the flight. Here is a special report on why Benjamin Netanyahu is calling Captain Machar a hero of Israel.
4: Routine flight, calm skies, then a body blow. Captain Smith Machar, the pilot of Israel-bound Fly Dubai flight FZ1073, has revealed chilling new details of the terrifying moments inside the cockpit. Speaking on a call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Machar, who was grievously injured, said the flight had begun normally. Smith said he was looking toward the front of the cockpit while his Omani co-pilot, Al-Hamami, prayed behind him. And he didn't look at him out of respect. Then, after several minutes, a heavy blow struck the back of his head. His first thought, the aircraft itself had suffered catastrophic damage. But the blows kept coming. That was when Machar realized his co-pilot was attacking him with the crash axe kept in cockpit for emergencies. The assault left his vision blurred, yet he sensed the aircraft plunging sharply. Captain Machar managed to open the door once. However, the radicalized Hamami shut the open door. Fighting through the pain, he mustered one final push to open the cockpit door, allowing passengers to regain control of the aircraft. One man, one door, one final push.
5: I had that one last fight left in me that, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm going to die. And that's when I pushed against everything. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door. And thankfully, people were waiting to pounce back, took over the control and...
4: Netanyahu called the Indian pilot a hero of the entire world for foiling the co-pilot's alleged attempt to crash the flight. Machar is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. The Israeli Prime Minister also invited him alongside Prime Minister Narendra Modi to light a flame on Israeli Independence Day.
6: I want to have Captain Smith and Prime Minister Modi, our great friends, I really would like them to bear a celebratory flame. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case, all the citizens of Israel will embrace you. They do now and they will then too. So we hope to see you very soon in Israel.
4: Had it not been for Captain Smith Machar's bravery, West Asia would have plunged into a deeper crisis. Bureau Report, India Today.
3: At the Asian Games, India's star boxers Lavlina Borghain, Parveen Hooda and Ankush Pangal all secured gold medals in their respective categories. Ankush Pangal completing a golden hat-trick for Indian boxing. Lavlina won in 75 kg boxing and Parveen claimed gold in 65 kg category, ending India's 12-year wait for women's boxing gold at Asiad. With these wins, Lavlina and Parveen joined the legendary AMC Mary Kom in a select group of Indian women boxers who have won Asiad gold medals. On the same day, Ankush Pangal won the men's 80 kg boxing gold. My colleague, Siddharth Vishwanathan, has spoken to the star boxers. Listen in.
7: It was an incredible pleasure to welcome Lavlina Borghain, gold medalist, and belated happy birthday, Lavlina. So, Lavlina, birthday pe gold. 2023 mein jo silver medal tha, wo gold mein change hua. And aapne Mary Kom aur Parveen, unke saath ab ek illustrious list mein ho, Asian Games ke boxing mein. To ye kya sabse ek dream tournament raha hai aapke liye?
8: Ye कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था सबसे पहले कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला पाई वो भी मेरे बर्थडे के दिन सबको याद रहेगा मुझे तो हमेशा ही याद रहेगा और इसीलिए भी स्पेशल है कि लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था और इस टाइम मैं गोल्ड मेडल ला पाई तो कहीं ना कहीं माइंड में था और ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा सिल्वर था तो कहीं ना कहीं थोड़े से उसके वजह से ही कहीं ना कहीं नेशनल एंथम छूट रहा था तो उसको मुझे करना था इस बार और इस बार इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से नेशनल एंथम बजे और मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई.
7: लवलीना, ऐसा क्या बदल गया ये एक दो सालों में? क्योंकि आपको ये भी याद है कि यस सिल्वर था, इंजरीज भी हो गए थे हमको आपको अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 2026 में ऐसा क्या टिका है जो पिछले साल शायद रिदम, ट्रेनिंग, डाइट, क्या ऐसा कुछ बदला हुआ है जिससे आप इतने बेहतरीन फॉर्म में हो?
8: मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिपरेशन रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है. इतना मेरा 15 साल हो गया, अभी तक सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ, सेम ही डिसिप्लिन, सुबह उठना है, जाना है, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, तो वो भी काम करता है. एक दिन से ये चेंज नहीं हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, तब से माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. हाँ, हम हर कंपटीशन में सीखते हैं और हारने से और भी ज़्यादा सीखते हैं. कहीं ना कहीं हमारा कोशिश और भी ज़्यादा रहता है कि हमें और अच्छा करना है, तो वही मुझे सिखाते हैं कि अच्छा करते रहना है और जीतने के बाद तो हमें और देखना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है और अपना काम करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, एटलीस्ट हम अपना काम तो कर सकते हैं.
7: लवलीना, ये जो लास्ट 2-3 महीने वर्ल्ड फाइनल्स भी हम जीते हैं, वर्ल्ड वुमेन भी बढ़िया डोमिनेट कर रहे, कॉमनवेल्थ हमने देखा है, इट वाज अ गोल्डन स्वीप. यहां पर भी देखे आप और परवीन और अंकुश, वुमेन पावर डोमिनेट कर रहा है हर स्पोर्ट में. तो ये एशियन गेम्स वाकई में नारी शक्ति है फॉर मॉडर्न इंडिया?
8: हम बोल सकते हैं कि इसे वुमेन हर फील्ड में ही इतना अच्छा कर रहा है. पहले ये इतना नहीं देखा जाता था, बहुत सारे फीमेल आते नहीं थे निकल के. लेकिन हमारे जो मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है और उसी वजह से निकल के आ रहा है. जब उनको चांस मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव करके दिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है. और साथ ही मेंस में भी अच्छा कर रहा है, इक्वली जा रहा है हमारे बॉक्सिंग में. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है. इस बार जितना फीमेल का मेडल है उतना मेल का भी है. हाँ, गोल्ड हमारा 2 है लेकिन मेडल उतना ही था. तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली कर रहा है और इस तरीके से हम करते जाएंगे तो आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा. हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, साई है, बीएफआई है, सब सबके वजह से ही हम लोग अच्छा कर रहे हैं.
7: आखिरी सवाल लवलीना, LA 28 आपने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा ही करना है, और या तो आपने बोला है ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, LA का जब होगा तब देखा जाएगा. आप आगे के सोचते हो या फिर यू लिव इन द प्रेजेंट?
8: मैं प्रेजेंट का ही सोचती हूँ. ऑब्वियसली एक टारगेट तो रहता ही है कि LA में जाना है, कलर चेंज करना है. 2024 के बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर से कमबैक करना. कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. गोल है लेकिन प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इस मेडल का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि मैं एटलीस्ट प्रेजेंट में जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. मैं जी रही हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रही हूँ और इसीलिए रिजल्ट आ रहा है बस.
7: तो इफ यू कैन जस्ट शो द मेडल, दैट्स इट. एम इज LA 2028, सेम उम्मीद करते हैं हम सब. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लवलीना बोरगोहेन, लवली स्पीकिंग एज ऑलवेज, एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, परवीन हुडा, in the Asian Games gold medal winner, and boy oh boy it was such a proud moment. Parveen, sabse pehle bahut bahut shukriya humse judne ke liye.
9: Thank you sir.
7: Parveen, gold medal 2026, bronze medal mila tha aapko 23 mein, lekin halat hum jante hain wo kaisa hua tha. Bronze mila tha lekin whereabouts ki failure ki wajah se wo medal chala gaya. Uske baad aap lambe samay tak aap ring mein aaye nahi. जब इतना सब कुछ हुआ है तो क्या चल रहा था आपके मन में, और कैसे इतना अपने आप को आपने मजबूत बनाया कि हाँ मैं आईची नगोया में गोल्ड मेडल जीते, वो कैसा आपने जद्दोजहद किया था?
9: सो जो लास्ट टाइम मैंने गोल्ड मेडल जीता था वो काफी स्ट्रगल्स किया था मैंने उस टाइम भी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको कैंसर था और मैं उनको बोल गई थी कि मैं आपके लिए मेडल लेके आऊंगी. एंड देन मैंने उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो मेडल जीता और ये एक छोटी सी गलती की वजह से वो वापिस ले लिया था. तो मेरे को यही था कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं कलर चेंज करके लेके आऊंगी. तो वही मेडल ही मेरा मोटिवेशन बनाया मैंने उस टाइम पे.
7: परवीन, वो जो क्या पल था एशियाई खेलों में कि हाँ ये मैच जीतकर या कोई एक पर्टिकुलर राउंड जीतकर मैं गोल्ड जीतूंगी, ऐसा आपको क्या, कौन सा मैच है, कौन सा पल था जो विश्वास दिला कि हाँ ये गोल्ड मेडल एशियाई खेल में मेरा है?
9: फाइनल बाउट ही थी सर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 थी और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट थे तो उनके साथ ही था. और फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों का एक राउंड मैं जीती थी, एक राउंड क्लियर वो जीती. तो थर्ड राउंड में हो गया था कि इस राउंड में मुझे ऑल आउट जाना है, ये राउंड जीत गई तो मैं यहाँ पे चैंपियन बन जाऊंगी.
7: अच्छा, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था कि वो जीती थी, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि जजेस का भी पता नहीं, एक राउंड वो जीती एक राउंड आप जीते, तो बहुत टेंशन हो रहा था?
9: नहीं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी सर, क्योंकि थर्ड राउंड में मैंने अच्छा किया था और हमें लाइक पता चल ही जाता है, हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं. बट लाइक अपोनेंट भी सेलिब्रेट करी थी, वो थोड़ा जजेस को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं प्लेयर्स की हाँ मैं जीती हूँ वैसे करके. बट मैं फिर भी लाइक मेरे को था कि हाँ मेरे फेवर में ही आएगी बाउट.
7: परवीन, जो सफर आपने तय किया है, हाँ एक छोटी सी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉन्ज मेडल चला गया था, गोल्ड आप जीते हो, इस सफर में जो भी है क्या क्या आपको याद दिलाता है कि हाँ मैं इसी के लिए बनी थी, मैं इसी के लिए, मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बनी हूँ, कैसा था ये?
9: सो लाइक उसके बाद मैं और भी मेंटली स्ट्रोंग होके आई हूँ जो एशियन गेम्स लास्ट वाला हुआ. और अभी मेरे को और भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्योंकि मेरी काफी अच्छी टीम है, काफी सपोर्ट मिल रहा है. तो लाइक वो मेडल काफी मैटर करता है इस गोल्ड के लिए.
7: तो परवीन, अभी देखिए एशियाई खेल का गोल्ड मेडल मिल गया है, आगे है ओलंपिक क्वालिफायर्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आखिरकार LA 2028 का टिकट. आपने कुछ सोचा है उसके बारे में या फिर फिलहाल एक दो दिन बाद ठीक है गांव जाएंगे मस्ती करेंगे थोड़ा, है ना, मस्ती करेंगे और नहीं तुरंत आप ट्रेनिंग
9: तो
7: करेंगे?
9: नहीं मतलब दो तीन दिन का तो थोड़ा ब्रेक ही लेंगे सर, क्योंकि मेंटली भी काफी लाइक स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए और अभी बैक टू बैक कंपटीशन ही खेल रहे हैं पूरे साल. बट यहाँ प्लान तो हमने लाइक पहले से ही बना रखे हैं कि हाँ ऐसे करना. अभी एशिया में अपने उसका लेवल का पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पे लाइक क्वालिफाई करना है और भी जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में अच्छे तो उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है.
7: बिल्कुल. सो देयर वी हैव इट फोक्स, परवीन हुडा फ्रॉम द लोज ऑफ 2023 टू नाउ सिक्योरिंग अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल. मैरी कॉम और ये जो भी है लवलीना, उनके लिस्ट में आप आ गए हैं. सो कंग्रेचुलेशंस आपको एंड एशियाई खेल और आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए. सो देयर वी हैव इट फोक्स.
3: That's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break. Now keep watching.
10: You are watching India Today.
11: Now we are trying to accommodate online classes.
12: A decision that became the starting point of a much bigger story.
13: They've taken out a solidarity march of the 17-year-old who was gang raped about 7 minutes from their college.
12: From the studio to the campus, to the ground, to the voices that needed to be heard.
14: Even if it's the front of the college or the backside of the college, we are just unsafe.
12: We followed the story. We asked the questions.
15: Delist, jo log hai physically assault karte hai bachcho ko.
16: We need the protection.
17: That's your main demand.
12: We stood up for her.
18: The faculty has told these girls, all of them, that they cannot speak to the press.
12: India Today, always standing up for her.

0: political war over SIR is heating up by the hour. Mumbai witnessed a rare show of opposition unity on Sunday as Thackeray cousins Raj and Uddhav came together on the streets, targeting the chief election commissioner.
1: पण मेक इन इंडिया मध्ये हुकूमशहा सुद्धा जर आपल्या देशात बनणार असेल तर त्याला या देशातच जाळून टाकण्यासाठी आज आम्ही उभे राहिलो गाव. बाकी सगळं मेक इन इंडिया ठीक आहे.
0: After the Congress-led protests in Mumbai, the Shiv Sena, UBT and MNS joined hands for a massive joint march, alleging irregularities in the electoral process and stepping up the demand for the CEC's resignation. Congress and the NCP-SP leaders also joined the stir. But the political temperature isn't rising only in Maharashtra. In Delhi, Aam Aadmi Party and the left parties too hit the streets, protesting against the SIR exercise and stepping up its attack on the election commission.
2: ये वोट का सवाल है. ये जो सब यंग लोग हैं जो पदस्थ, इनका वोट का अगर चोरी होती है जैसे हो रहा है फॉर्म 6 के द्वारा, क्या होगा इस देश की जनवाद का? हम सब दिमागी नक्सल है और दिमागी संगी राज कर रहे हैं, दिमागी अपराधी राज कर रहे हैं.
0: Three women journalists have also alleged that police sexually harassed them during October 3rd protest at Jantar Mantar, prompting a crime branch probe. And in Hyderabad, the AIMIM chief Asaduddin Owaisi launched a fresh offensive. He has accused the BJP and the RSS workers of filing false forms, 7 objections, and has demanded action from the Election Commission and the Telangana Chief Electoral Officer.
3: BJP aur Sangh Parivar ke log फॉर्म 7 डालकर नामों को डिलीट कराना चाहती है. अगर कोई झूठा फॉर्म 7 डाल रहा है तो इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहे कि आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए.
0: ओएसी हैज वॉर्न दैट द ऑपोजिशन विल नॉट रिमेन साइलेंट एंड अ मच बिगर एजिटेशन कुड बी ऑन द कार्ड्स.
3: नाटक खत्म नहीं हुआ तो याद रखो, दिल्ली के जंतर मंतर में जो मंतर नहीं पड़े वो मंतर हम हैदराबाद की रोड पर और गली कूचों में कर देंगे.
0: द शार्पेस्ट पॉलिटिकल एस्केलेशन हैज कम फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैज कॉल्ड रीसेंट इलेक्शंस इलीगल एंड हैज डिमांडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज.
4: आज देश जो चल रहा है वो इलीगल इलेक्शन पे चल रहा है. मोदी इलीगल प्राइम मिनिस्टर, शाह इलीगल मिनिस्टर और जितने भी अब चीफ मिनिस्टर्स बने कहां के भी वो सब इलीगल. सबको डिसॉल्व करना, इलेक्शन कराना और बैलेट पे इलेक्शन कराना.
0: द बीजेपी हाउएवर हैज हिट बैक हार्ड, अक्यूजिंग द कांग्रेस ऑफ हैविंग अ सिलेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स द इलेक्शन कमीशन. It's charged, when Congress wins, the EC is fine. When Congress loses, the EC becomes flawed.